0: श्रोताओं, सुबह के समय 5:30 हुए हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए ये अनमोल विचार।
1: जिज्ञासु होना केवल प्रश्न पूछना नहीं, बल्कि जीवन को समझने और निरंतर सीखते रहने की एक सुंदर प्रवृत्ति है। जिज्ञासु व्यक्ति हर अनुभव में ज्ञान खोजता है, हर चुनौती में अवसर देखता है और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। यही गुण उसे सामान्य से असाधारण बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक महान खोज और आविष्कार जिज्ञासा की ही देन है। इसलिए अपने मन में जानने, समझने और सीखने की चाह को हमेशा जीवित रखिए, क्योंकि यही चाह सफलता और प्रगति का आधार बनती है। जिज्ञासा ज्ञान का द्वार है और जिज्ञासु व्यक्ति उसके माध्यम से सफलता की राह खोज लेता है।
0: अभी आपने सुना ही अनमोल विचार, और अब श्रोताओं, आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये मातृ वंदना।

0: श्रोताओं, नरेंद्र चंचल के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ चर्चा करें जिमीकंद एवं घुइयां के संदर्भ में। जिमीकंद और घुइयां की खेती कंद के लिए की जाती है। इसमें खास बात यह है कि इनका भंडारण काफी लंबे समय तक किया जा सकता है, यानी आम परिस्थितियों में ही इन कंदों को काफी दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये कंद सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। घुइया के कंद को उबालकर आलू की भांति खाया जा सकता है। इसकी पत्ती को सब्जी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। किसान भाइयों, जिमीकंद और घुइया को उष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, लेकिन इन फसलों के लिए भारी मिट्टी उपयुक्त नहीं होती। क्योंकि कंद मिट्टी के अंदर बढ़ते हैं, अतः जरूरी है कि मिट्टी ऐसी हो जिसमें कि इनके बढ़वार के लिए उचित पोषक तत्व हो और मिट्टी की जो भौतिक संरचना है वो भी इसके लिए अच्छी हो। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त इन फसलों के लिए जमीन उपजाऊ के साथ साथ जैविक पदार्थ भी काफी मात्रा में जमीन में होने चाहिए। जहां तक जिमीकंद और घुइया की खेती का सवाल है, भूमि की तैयारी के लिए जमीन की 4 से 5 बार जुताई करें। लगभग 25 से 30 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जुताई से पहले खेत में डाल दें, जिससे कि बार बार जुताई होने से खाद जमीन में भली प्रकार मिल जाए। अच्छी उपज के लिए जरूरी है कि उर्वरकों का भी इस्तेमाल किया जाए। जिमीकंद और घुइया के लिए औसतन 100 किलोग्राम यूरिया, 500 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 125 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के एक दिन पहले भूमि में मिश्रित कर दें। बुआई के 60 दिन बाद 50 ग्राम यूरिया तथा 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे की दर से टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। किसान भाइयों, उर्वरकों की ये जो मात्रा हमने आपको बताई ये औसत है। आपके खेत में कितने उर्वरक ठीक ठीक देने हैं, इसकी जानकारी के लिए आप अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। इन फसलों की बुआई के लिए कंदों का प्रयोग किया जाता है। बोए जाने वाले प्रत्येक कंद में आंखें हो तथा प्रत्येक का वजन 20 से 25 ग्राम तक हो। इसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर 8 से 12 क्विंटल तक है। फसल की बुआई कम से कम 1 मीटर की दूरी पर करनी चाहिए। कंदों की बुआई 5 सेंटीमीटर की गहराई में भी होनी चाहिए। बुआई के समय जमीन में पर्याप्त नमी हो, इस बात को हमें सुनिश्चित करना होगा। यदि अंकुर जमीन से बाहर निकल आए और उस वक्त बारिश का अभाव हो, यानी लंबे समय तक बारिश ना हुई हो, तो सिंचाई जरूर कर लें। फसल में 1-2 बार हल्की गुड़ाई भी करनी चाहिए। गुड़ाई के दौरान खरपतवार भी जमीन से निकाल दें, क्योंकि खरपतवारों से इन पौधों को काफी नुकसान होता है। खरपतवार एक ओर तो इनसे जगह, सूर्य की रोशनी तथा पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वहीं ये कई प्रकार के कीड़े और बीमारियों के लिए भी आश्रय प्रदान करते हैं। प्रत्येक गुड़ाई के बाद पौधों को मिट्टी चढ़ाएं तथा खुली हुई जड़ों को ढक दें। यदि मिट्टी टॉप ड्रेसिंग के समय चढ़ाएं तो पैदावार अच्छी होती है। किसान भाइयों, घुइया में प्रमुख रूप से झुलसा रोग लगता है। इस बीमारी के नुकसान से फसल को बचाने के लिए आप डाइथेनम 45 के 0.2% घोल का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, घुइया की फसल 8 से 10 महीने में तैयार हो जाती है, जबकि जिमीकंद को तैयार होने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। इन फसलों की खुदाई पातू या फावड़े से करनी चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने पर घुइया की पैदावार 20 से 30 मैट्रिक टन तथा जिमीकंद की 30 से 40 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर मिल सकती है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स। विषय था जिमीकंद व घुइया कैसे उगाएं।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6 बजे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: fue más. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी

0: मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Centre and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay foundation stone of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his two-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Banga Divas, West Bengal Day, celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Tomorrow, Prime Minister Modi will participate in the 12th International Yoga Day celebration in Kolkata at around 6:30 a.m. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next Vice President of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. That decision was taken during the FATF plenary held from 17th to 19th of June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said the appointment reinforces India's commitment to combating terrorism, financing and illicit financial networks. It added that Mr. Agarwal's experience as former head of India's FATF delegation and former director of FIUIND will help advance the FATF's mandate of safeguarding financial integrity. External Affairs Minister Dr. H. Jaishankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jaishankar spoke about the deepening India-US partnership across domains, even as both nations navigate its issues and complexities. He added that as India rises,

जहाँ सानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार MV रानी लक्ष्मी आज दिन में 11 बजे शहीद दीप से श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान दोपहर बाद 1 बजे शहीद दीप से स्वराज दीप जाएगा तथा जलयान आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज दीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। MV हट में आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज दीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज दीप से शहीद दीप जाएगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। MV बारटान आज दोपहर बाद 2:30 पर शहीद दीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज दीप की यात्रा पर MV कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान कल सुबह 5:30 पर स्वराज दीप से छोड़कर शहीद दीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अब सुनिए कल होने वाली यात्राओं के बारे में। स्वराज दीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर MV रानी चंगा कल यानी रविवार 21 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इस जलयान की रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज दीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा होगी कल ही दोपहर 12 बजे। MV रानी लक्ष्मी कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद दीप जाएगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। MV बारटान कल सुबह 6:15 पर स्वराज दीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज दीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद दीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद दीप से स्वराज दीप के लिए रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज दीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV जॉली बॉय कल दिन में 11:30 पर स्वराज श्री विजयपुरम से स्वराज दीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज दीप से शहीद दीप जाएगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। शहीद दीप की यात्रा पर MV हटबे कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से

प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा पर छूटेगा और ये जलयान अगले दिन यानी सोमवार 22 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी हडबे सोमवार 22 तारीख को सुबह 7 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान अगले दिन यानी मंगलवार 23 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी सेंटिनल कल रविवार 21 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के समय 6:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बातें जादू की। दोस्तों, नजरों का जादू सच में बहुत अजीब और गहरा होता है, क्योंकि कई बार बिना कुछ कहे सिर्फ एक नजर बहुत कुछ बयां कर देती है। तेरी नजर का जादू कुछ इस तरह छा गया कि खुद को भूलकर मैं तुझमें ही समा गया।

दोस्तों, प्रकृति का जादू शब्दों से परे है। यह हर सुबह की धूप से लेकर रात के तारों तक बिखरी एक ऐसी जीवंत कविता है जो हमें सुकून देती है। प्रकृति का हर मौसम एक जादू है जो हमें मुस्कुराना, खिलना और हमेशा आगे बढ़ते रहना सिखाता है।

दोस्तों, जादू कहूँ या नशा तेरी आंखों का, जिसमें खो गए हैं हम होश गवा कर। कुछ ऐसा असर हुआ है तेरी नजर का, कि अब और कुछ नहीं भाता इस दिल को भुला कर।

0: दोस्तों, जादू भरी इस दुनिया से अब हमें दीजिए इजाज़त, होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ, एक नए अंदाज में। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। विषय था जादू, प्रस्तुत कर रही थी सुनीता। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 275वीं कड़ी, गायक कलाकार सुरेश वाडकर।

सीता जी की खोज में सारा वानर समाज जंगलों की खाक छान रहा है, किंतु उनका कोई सुराग नहीं मिलता। वन वन भटकते हुए एक दिन सबको बड़ी प्यास लगी, किंतु पानी का कोई स्रोत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। हनुमान ने भांप लिया कि यदि पानी नहीं मिला तो सबके प्राण जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पृथ्वी के गर्भ में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गुफा के ऊपर अनेक पक्षी मंडरा रहे थे, अनेक उसमें प्रवेश कर रहे थे। हनुमान पूरे वानर समाज को लेकर उस गुफा में पहुंचे।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 275वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए वतन के गीत।

श्रोताओं, संवेद स्वर में अभी आप वतन के गीत सुन रहे थे। अब ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही क्षणों के बाद यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागनी। ठीक उसी समय FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। विषय होगा निरोग जीवन का दैनिक मंत्र योग। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नंदिनी, मेडिकल ऑफिसर योगा एंड नेचुरोपैथी। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप मेहदी हसन को सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने सुबह 9 बजे आप सुन सकते हैं। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप TR महालिंगम का कर्नाटक शैली में गायन सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश का आनंद लीजिएगा सुबह 10 बजे। दिन में 11 बजे गीत अतीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। दिन में 11 बजे गीत गुंजन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। गीत अतीत कार्यक्रम का लुत्फ उठाइएगा दिन में 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु में फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे। 12:30 पर मलयालम में आप सुगम संगीत का आनंद ले सकेंगे। 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप पंकज उदास को सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का लुत्फ उठाइएगा 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर स्थानीय सभा जारी रहेगा, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 3:30 पर। आज हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी दोपहर बाद 3:53 पर। 3:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी किए जाने संबंधी कार्य का पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से सीधा प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुन सकते हैं। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम। 5:10 पर दिल्ली केंद्र से हम प्रसारित करेंगे पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 6ठी कड़ी। 5:30 पर बांग्ला में बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम शाम 6 बजे, जिसमें आप महावीर नगर प्रात्रापुर के एक पशुपालक श्री लाल बहादुर यादव से की गई बातचीत सुन पाएंगे। आमने सामने कार्यक्रम 6:30 पर। 6:45 पर राजकुमार दाग की लिखित झलकी सुनिएगा हमारी भी सुनो। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आपको दी जाएगी 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा दिल ने फिर याद किया। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी 7:30 पर, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे योग ही जीवन है।

कर 30 मिनट पर रोजगार समाचार, उसके बाद गौरवगान प्रसारित की जाएगी। इन कार्यक्रमों के अलावा 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात्रि 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विवेक करमहे का गायन होगा, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन स विशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रिय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्यान्तर्गतं प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजनायां चतुःशताधिक द्विसहस्र कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति एएस चन्द्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य अयं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्वकप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलम् 1-0 अंकान्तरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीया अन्तिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:01 हुए हैं। जन सूचनाएं। पहले सुनिए मौसम की जानकारी। आज सुबह 5:30 स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई। सापेक्ष आर्द्रता 92% और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:57 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:45। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए आज की विमान उड़ान संबंधी जानकारी। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन में 11:00 श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 आज ही दिन में 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज के विमान उड़ान संबंधी जानकारी सुन रहे थे। एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश की एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021।
2: नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार। पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और कल पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा, पश्चिम बंगाल की कला और साहित्य ने भारत के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर आयोजित किया जाएगा और कल होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा को देखते हुए प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे आज हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। वे पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सहित प्रमुख केंद्रीय कृषि योजनाएं भी लागू करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। योग दिवस कार्यक्रम कल सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। श्री मोदी कल कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में स्वदेश में निर्मित 3 नौसैनिक पोत INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का जलावतरण करेंगे। पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी ने द्वीप समूह में रहने वाले पश्चिम बंगाल के सभी निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल लंबे समय से दूरदर्शी और अग्रणी लोगों की भूमि रही है, जिनके साहित्य, कला, विज्ञान और सार्वजनिक जीवन में योगदान ने भारत के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। इस दिवस को मनाते हुए उन्होंने विकसित भारत के विजन और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित होकर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। पर्यटन विभाग, शिक्षा, खेल एवं युवा मामले, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, जनजातीय कल्याण, श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद तथा अन्य संबद्ध विभागों के सहयोग से 26 से 28 जून तक कार्बाइन स्कोव तट पर मॉनसून कार्निवल का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य पर्यटन, संस्कृति, खेल, स्थानीय परंपराओं, हस्तशिल्प, व्यंजनों और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ लाना है। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें बीच स्पोर्ट्स फेस्ट के तहत 26 और 27 जून को दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक कार्बाइन स्कोव तट पर पुरुष और महिला श्रेणियों में वॉलीबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट और रील मेकिंग शामिल है। इस दौरान प्रदर्शनी मैदान में फूड फेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। आवेदन पत्र पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मॉनसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट के लिए 23

जुनून बीच वॉलीबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए 24 जून जबकि रील मेकिंग के लिए 25 जून दिन में 11 बजे तक पंजीकरण किया जा सकता है। प्रशासनिक कारणों के चलते अंडमान निकोबार पुलिस भर्ती के तहत कुछ पदों के लिए रिक्तियों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 जून की मध्य रात्रि कर दी गई है जबकि आवेदन पत्र में सुधार खिड़की 27 जून तक खुली रहेगी। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से मानव विज्ञान सर्वेक्षण सभागार में चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। ये फिल्म फेस्टिवल कल तक चलेगा। इसी कड़ी में आज दिन में 11 बजे आगंतुक और शाम 5:30 बजे सरदार उधम का प्रदर्शन किया जाएगा। विभाग ने छात्रों, स्थानीय फिल्म निर्माताओं, फोटोग्राफरों, ड्रोन ऑपरेटरों, ट्रेवल ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, थिएटर ग्रुप्स, फिल्म क्लबों, पर्यटकों और आम जनता को इस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। प्रादेशिक समाचार आप

कर दी गई है, जबकि आवेदन पत्र में सुधार खिड़की 27 जून तक खुली रहेगी। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से मानव विज्ञान सर्वेक्षण सभागार में चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। ये फिल्म फेस्टिवल कल तक चलेगा। इसी कड़ी में आज दिन में 11 बजे आगंतुक और शाम 5:30 बजे सरदार उधम का प्रदर्शन किया जाएगा। विभाग ने छात्रों, स्थानीय फिल्म निर्माताओं, फोटोग्राफरों, ड्रोन ऑपरेटरों, ट्रेवल ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, थिएटर ग्रुप्स, फिल्म क्लबों, पर्यटकों और आम जनता को इस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और नीट यूजी की पुनः परीक्षा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल स्वस्थ आयु के लिए योग विषय पर द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम सुबह 6:20 से 7:50 तक चलेगा। इसके अलावा गर्ल्स स्कूल सभागार, फ्लैग पॉइंट, नेताजी स्टेडियम के बहुउद्देशीय सभागार, जंगली घाट स्थित खेतान कल्याण मंडपम और टैगोर राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय में भी योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी विभागों, संस्थानों, शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता से द्वीप समूह के निर्धारित स्थानों पर सामान्य योग प्रोटोकॉल के अभ्यास में शामिल होने का अनुरोध किया है। कल होने वाले नीट यूजी की पुनः परीक्षा को देखते हुए प्रशासन ने परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सहायता के लिए आपदा प्रबंधन निदेशालय में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में एक कंट्रोल रूम बनाया है। विभाग ने उम्मीदवारों को ट्रांसपोर्ट, खराब मौसम या अन्य आपातकालीन स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क करने को कहा है। ये कंट्रोल रूम परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से मदद के लिए एक केंद्रीय समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा। इसके लिए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा आपातकालीन हेल्प नंबरों को रीनीट यूजी परीक्षा 2026 से जुड़ी सहायता के लिए खास हेल्पलाइन नंबर के तौर पर तय किया गया है। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी किसी भी सहायता के लिए 23880240114, 24012 6 और 244266 या 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। इग्नू द्वारा जुलाई माह में प्रवेश सत्र के लिए मास्टर ऑफ साइंस इन क्लाइमेट चेंज और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लाइमेट चेंज कोर्स शुरू किए गए हैं। ये दोनों कोर्स ODL मोड के जरिए कराए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार ignoadmission.summer.edu.in पर पंजीकरण कर ऑनलाइन मोड के माध्यम से किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। अधिक जानकारी के लिए इग्नो क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मनारघाट में लिंग संबंधी जागरूकता और बच्चों की सुरक्षा अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा, बाल विवाह की रोकथाम, गुड टच और बैड टच और लिंग समानता था। इस अभियान का संचालन FNSW और जेंडर CRP राखी लकड़ा ने किया। कार्यक्रम में 35 सामुदायिक सदस्यों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और कल पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा, पश्चिम बंगाल की कला और साहित्य ने भारत के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर आयोजित किया जाएगा और कल होने

0: वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा को देखते हुए प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:15 हुए हैं और अब श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम देश रागनी।

देशरागनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब बात अपने देश की आती है तो नाम भारत का हमें गर्व से भर देता है। सदियों से भारत दुनिया की शान है। हमें अपना देश जान से प्यारा है। विभिन्नताओं के बीच एकता की माला में पिरोया गया हमारा देश भारत है। भारत हमारी जन्मभूमि है, बड़ी शान से हम कहते हैं। इसकी एकता, अखंडता और देश में सौहार्द को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसकी विभिन्नता ही इसे दुनिया में अद्वितीय बनाता है।

दोस्तों, अपने वतन की खास बात यह है कि लोगों ने इसे अपने महबूब से भी अधिक प्रिय जाना है। तभी तो महबूब की अदाएं भी इन्हें वतन की याद दिलाता है।

हिंदुस्तान हमारी शान है, हमारा ईमान है। ये भारत भूमि हमारी कर्म भूमि है, अनेकता में एकता की बड़ी मिसाल है। भारत भाग्य विधाता, सत्य और अहिंसा इसका गहना है, और इस गहने को कोई बैरी चुरा ना ले, इसका ध्यान रखना है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।

0: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि कल 21 जून है और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने वाला यह दिन अब दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियानों में से एक बन चुका है। करोड़ों लोग इस अवसर पर योग अभ्यास करते हैं, साथ ही योग के सारे मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। बदलती जीवन शैली, बढ़ती उम्र के साथ होने वाले स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक तनाव जैसे चुनौतियों के बीच योग से जुड़ने पर और क्या क्या लाभ मिल सकती है, इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मेडिकल ऑफिसर योगा एंड नेचुरोपैथी की डॉक्टर नंदिनी जी को। डॉक्टर नंदिनी, नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी। हाँ श्रोताओं, आज का हमारा विषय है निरोग जीवन का दैनिक मंत्र योग। इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर खुल चुका है, तो विषय से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 2325400, और हमारा एसटीडी कोड है 03192 232540 एंड 03192। तो डॉक्टर नंदिनी, सबसे पहला प्रश्न हम यही पूछेंगे कि योग क्या है और क्यों जरूरी है।
1: जैसे कि सभी आजकल योग का एक शब्द हमेशा से जानते हैं कि क्या है, और लोग उससे बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रभावित भी हैं।
0: जी,
1: योग का जो बेसिक मतलब होता है जुड़ना।
0: जी,
1: ठीक है, हमारे शरीर को हमारे परमात्मा से जो जुड़ना होता है वही योग होता है।
0: जी,
1: बट हम योग को एक बेसिक डिसिप्लिन मानते हैं, जिसके लिए हमारे पतंजलि योग सूत्र में साफ साफ लिखा हुआ है हमारे अष्टांग योग, यानी कि योग को हमने अष्ट अंगों में माना बांटा गया है। उसके सबसे पहली स्थिति आती है हमारी डिसिप्लिन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग केवल एक फिजिकल फॉर्म या एक्सरसाइज ना होके हमारे जीवन का एक जीवन शैली है।
0: ओके, तो जैसे कि अभी आपने बताया आसन और प्राणायाम वगैरह, तो इन सब में और ध्यान, इसमें क्या अंतर है?
1: जैसे कि हम हमेशा आसन के बारे में बात करते हैं, तो आसन का डेफिनेशन ही ये होता है कि सिरम सुखम आसन, मतलब ऐसे कोई स्थिति जिसमें आप पूरे के पूरे अवेयर हो कि क्या कर रहे हैं आप, वह उपस्थित है, और साथ ही साथ में आप लोग कंफर्टेबल है, मतलब ऐसे कोई स्थिति ना हो जिसमें आपको जबरदस्ती खड़ाया गया है या रुकाया गया है, वैसी स्थिति को हम आसन नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें आप लोग कंप्लीटली अवेयर है और कंफर्टेबल है, संतुष्ट है, वैसी स्थिति को हम आसन कहते हैं। तो वो किसी फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म हो सकता है। ऐसे आसन को हम लोग स्टैंडिंग, सिटिंग या लेट के भी कर सकते हैं।
0: जी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले हमारे बीच में एक कॉलर जुड़ चुके हैं।
1: जी
0: हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
0: जी नमस्कार सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी बताएं अपना नाम।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, बताइएगा, प्रश्न पूछिएगा, मैम सुन रही हैं आपको।
2: जी, तो मेरा मैम को नमस्कार। और
1: नमस्कार।
2: दो प्रश्न।

0: जी
1: पहले मेरा ये प्रश्न प्रश्न रहेगा, जो बीपी शुगर बढ़ता है और उसके लिए कौन कौन सा योग करना चाहिए? और दो प्रश्न मेरे और है, एक प्रश्न ये है मेरा, जो बेचारे जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो क्या बोलते, चल नहीं पाते हैं, कई बार 80 साल से ऊपर होते हैं, तो
0: जी
1: उनके लिए कौन सा योग रहता है? और दूसरी बात ये, जो श्रवण योग कौन सा है जिससे हमें जो कम सुनाई देता है, तो उसके लिए जो हमारा कान बिल्कुल स्वस्थ रहे और आंख भी स्वस्थ रहे, तो उसके लिए कौन कौन से जो है योग करने चाहिए?
0: जैसे कि पहला क्वेश्चन का आप सवाल आपने उठाया था कि आपको अगर मधुमेह है, मतलब डायबिटीज़ है, या आपको रक्तचाप की किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, तो वैसी जगह पे आप मंडूकासन या वज्रासन या वक्रासन कर सकते हैं, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आपको बीपी संबंधित या रक्तचाप संबंधित कोई भी बीमारियां हैं, तो आपको प्राणायाम पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगी। कपालभाति ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल ना करें, आपकी बीपी को बढ़ा सकते हैं। दूसरे सवाल आपने ये कहा था कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, मतलब बहुत उम्र के लोग हैं, बड़े उम्र के लोग हैं, तो उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम यानी कि लूजनिंग टेक्निक्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि वो जोड़ों में जितने भी दर्द होते हैं या सूजन हो जाते हैं, उसको मोबिलाइज करने में मदद करता है। तीसरे क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि अगर आपको कान कम सुनाई देते हैं और आँख के प्रैक्टिसेस के लिए क्या किया सकता है। कान अगर कम सुनाई देते हैं, तो उसके लिए आप एक बार पहले जांच भी करा दीजिए कि आपको क्या दिक्कत है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम लंबे समय तक करिए, तो आपको लाभदायक होगा। और अगर आपको आँख के पावर या मतलब आई साइट को या आई मसल को स्ट्रेंथनिंग करना है, तो आप त्राटक का अभ्यास सीख लीजिए। त्राटक आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक दे सकता है।
1: जी, धन्यवाद जानकारी देने के
2: जी
1: लिए।
2: जी तो जैसे कि
0: प्राणायाम के बारे में बात कर रहे
2: बात
0: थे,
2: कर रहे
0: आप
2: थे हम।
0: फर्क पूछ रही थी तीनों
2: जी
0: के
2: जी
0: बीच में। तो प्राणायाम मतलब होता है हमारे सांसों की गति को हम कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कि जैसा कि अगर आप यहाँ पे बैठी होगी या कोई भी आप काम करती होगी, पर हमारा जो दिमाग में कुछ और प्रकार के विचार हमेशा से दौड़ते रहेंगे।
2: दौड़ते रहते हैं।
0: आजकल हमारा एक ट्रेंड भी है कि हम बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं,
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऐसे भूलते नहीं हैं, बट हम जो भी कार्य करते हैं तो उस पर पूरा
2: फोकस
0: प्रकार
2: नहीं
0: का
2: रहता हमारा।
0: ध्यान नहीं रहता। तो
2: जी
0: मल्टीपल
2: जी
0: चीज़ों को साथ में करने की वजह से और ध्यान पूर्वक नहीं करने की वजह से प्राणायाम में मतलब आपके भूलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो प्राणायाम आपके माइंड को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, साथ ही साथ में आपकी उम्र अगर लंबी रहने की कोशिश करते हैं तो आप प्राणायाम करिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तीसरी बात है कि धारण का, मेडिटेशन का क्या फोकस होता है। मेडिटेशन आपके माइंड जो है उसको कंट्रोल करने में, आपके थॉट प्रोसेस, इमोशंस को कंट्रोल करने में
2: कंट्रोल
0: बहुत
2: करने में
0: ज़्यादा
2: हेल्प होते हैं।
0: लाभदायक होता है। तो
2: जी
0: तीनों का अलग अलग रोल है अपने अपने जगह पे, पर ये एक सीढ़ी की जैसा है। मतलब आसन को आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर प्राणायाम सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ध्यान का रूप आएगा। डायरेक्टली आप ध्यान सीखने जाएंगे तो आपको सीखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।
2: जी तो ये सब हम सीखने के लिए कैसे, कहाँ पर जा सकते हैं, जैसे कम्युनिटी योगा वगैरह जो होते हैं।
0: जी, कम्युनिटी योगा तो आजकल अंडमान निकोबार द्वीप समूह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर जगह किया जाता है, बट फिर भी हम आयुष हॉस्पिटल के योग विभाग में हर दिन हम लोग करते हैं।
2: करते
0: सुबह
2: हैं।
0: का टाइमिंग 5 से 6 है, शाम को टाइमिंग 4 to 5 है, या ओपीडी टाइमिंग में भी कोई पेशेंट अगर आके सीखना चाहता है तब भी उस प्रकार में आके सीख सकते हैं। तो हर रोग के लिए हम लोग योगा सिखाया जाते हैं, तो और जो लंबी समय में कंसिस्टेंटली रह के जो करते हैं उनको ज़रूर लाभ भी मिलता है।
2: तो हम समय के ऊपर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। जी हेलो हेलो।
3: हेलो, नमस्कार मैडम।
2: हाँ जी नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं धर्मवीर, गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
3: डॉक्टर साहब, मुझे दो तीन बातें पूछनी है।
0: जी
3: जैसे कि हमारी बेटियां और हमारी जो आजकल लड़कियां जो बड़ी हो जाती हैं, सियानी हो जाती हैं, उनके बाद उनकी हाइट कम रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ पाती, कई बार उनकी शादियां भी स्टक हो जाती है।
0: जी
3: तो मैंने ये सवाल किसी और एक्सपर्ट से दिल्ली में पूछा था, पर उन्होंने इसका सटीक कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खाने खान पान पे ही उन्होंने बात करके बात खत्म कर।
0: जी
3: मुझे आपसे जानकारी लेनी है कि उनके लिए कौन सा शुरू से ही योग ऐसा बच्चों को करवाना चाहिए, बेटियों को स्कूलों में भी और घर में उनको बताना चाहिए, क्यों हाइट, क्योंकि

0: हाइट भी होती है, हाइट कम होती है कई बार तो,
1: जी
0: और इसके लिए अगर उनकी हाइट हमें ठीक ठाक रखनी हो
1: जी
0: तो कौन सा योग हमें उनसे करवाना चाहिए। दूसरा एक सवाल और है कि जैसे म्यूजिक थेरेपी,
1: जी
0: योग में म्यूजिक थेरेपी भी क्या होती है क्या, इसके लिए क्या क्या, इसके जैसे म्यूजिक तो सुनने का ही होता है
1: जी
0: तो। और तीसरी एक बात और है, जैसे पहले हम देखते थे अभी भी होता है वो गेम्स है जिमनास्टिक,
1: जी
0: उसमें ऐसे ऐसे योग के आसन की क्रियाएं होती हैं
1: जी
0: वो बड़ी फास्ट होती हैं,
1: जी
0: क्या ये दोनों को हम सम्मिलित करके एक ही चीज माने, ये स्लो होती है वो फास्टिंग होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा खुल के बताएं, क्योंकि हमने ये सवाल पहले दिल्ली में पूछा था तो वो लोग जो उनके पास आंसर होता है बताने का वही बोलते हैं, बाकी सवाल वो खत्म इधर उधर कर देते हैं। कृपा करके आप पूरी हमारा ज्ञानवर्धन करें और सभी का लाभ हो, धन्यवाद।
1: जी, पहला सवाल तो आपका ये था कि जो बच्चे आपके छोटे हैं, बढ़ते उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या योगासन ऐसा है कि जिसके लिए
0: हाँ
1: उनका
0: सर
1: हाइट
0: देखिए,
1: बढ़
0: हाँ
1: सकता है, तो सबसे
0: सर
1: पहला
0: देखिए,
1: आसन मैं ये बोलूँगी कि आपका ताड़ासन बहुत अच्छा आसन है। आप अपने बेटियों या जो भी श्रोताओं ये सुन रहे हैं तो उनको मैं यही सलाह दूंगी कि ताड़ासन सबसे अच्छी आसन है, और वो खास करके लिखा हुआ है कि उसके लिए हाइट बढ़ते हैं। बट फिर भी मैं आपको ये भी सलाह दूंगी, जो भी बच्चे को हाइट कम है आपको लग रहा है तो वो सूर्य नमस्कार या योग के कोई भी आसन को रेगुलर बेस में करे, जिसमें ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस जब भी आप करते हैं तो आपका हाइट इंप्रूवमेंट होने में आपको बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। दूसरी आपने जो एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको
2: म्यूजिक थेरेपी,
1: म्यूजिक थेरेपी के साथ, जी सर देखिए म्यूजिक आके हम यो हमारा ऐसा माना जाता है कि म्यूजिक आपको हील करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसका भी एक अलग रिसर्च है जो कहता है कि म्यूजिक आपको सच में बहुत हील करता है। तो इमोशनल वेलबींग के लिए म्यूजिक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो रहा है तो आप कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक का प्ले चला के, पीछे में चला के, जिसमें वर्डिंग्स नहीं है, वैसे चीज़ों को चला के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको एकाग्रता भी साथ में बढ़ सकता है और आप ध्यानपूर्वक उस चीज़ को कर सकते हैं। तीसरी क्वेश्चन था आपका
2: जिमनास्टिक्स रिलेटेड,
1: जिमनास्टिक्स का, सर ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है सर, हम योग को जिमनास्टिक के साथ नहीं जुड़ा सकते हैं। भले
2: जी
1: आपको वो दिखने में सेम दिखता होगा बट योग एक जीवन शैली है, पर जिमनास्टिक एक जीवन शैली नहीं
2: स्पोर्ट्स,
1: है, एक
2: वो एक
1: स्पोर्ट्स का
2: स्पोर्ट्स
1: एक हिस्सा है,
2: जी
1: तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग है।
2: अलग है
1: शायद मैंने अपने आपके सवालों का जवाब सही से दिया होगा
0: जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये
2: जी।
0: क्योंकि ये योग ऐसी चीज है कि बचपन में तो सभी बच्चे खेलते कूदते हर तरह का अपने तरह से योग ही कर लेते हैं, पर जो उम्र बढ़ने के बाद घरों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो व्यक्ति वॉकिंग नहीं कर पाता, सैर नहीं कर पाता, तो जो घर पे बैठा रहता है वॉकिंग नहीं कर पाता, ऐसे लोगों की जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, कोई ऐसी चीज हो गई कि वो उनको कोई साथ में जाने वाला नहीं मिलता, डेली के डेली हफ्ते में एक दिन जाए फायदा नहीं मिलता, तो ऐसा घर में ही वो व्यक्ति वो इंसान क्या ऐसा योग करता रहे जिससे उसकी अपनी आजकल जैसे डायबिटीज तो इंडिया में बहुत है और बीपी भी बहुत है, तो इस दौरान ऐसे में कौन सा आप ऐसा
1: ऐसे
0: बैलेंस
1: ऐसे
0: वाला योग होता है?
1: ऐसी स्थिति में हम ज़रूर सूक्ष्म व्यायाम का मैं बोलूँगी, जिसको हम लोग लूजने प्रैक्टिस बोलते, जैसे हम गर्दन से लेके पैर तक सारे जोड़ों का जितना भी हमें लूजरिंग टेक्निक्स होता है उसको करवाते हैं, वो सबसे ज़्यादा लाभदायक है, जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट या विटामिन डी की कमी होती है तो उनको भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। साथ ही साथ में हम बताएंगे कि सूर्य नमस्कार, ये बहुत अच्छी 12 स्टेप्स प्रैक्टिस है जिसको आप लगातार करने की वजह से आपको बहुत
0: इसमें
1: ज़्यादा
0: बारह
1: लाभ
0: योग
1: होगा।
0: होते हैं
1: जी 12 आसन
0: सूर्य
1: होते
0: नमस्कार,
1: हैं, 12
0: हाँ
1: आसन
0: जी
1: होते हैं, तो सारे 12 आसन को आप लगातार करने पे कोशिश करिए, आपकी सांसों की गति में उसको जोड़ने की कोशिश करिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। साथ ही साथ आप घर पे बैठे बैठे प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो भी आपको लाभ देगा।
2: जी
0: ये हमने सूर्य नमस्कार बहुत किया अपने पहले यंग लाइफ में,
2: जी जी
0: और अब थोड़ा सा ये योग थोड़ा सा पीछे
2: जी
0: रह गया उम्र के
2: जी।
0: हिसाब
2: धर्मेंद्र
0: से।
2: जी आपको आपका आपके
0: बहुत
2: प्रश्न का उत्तर मिल
0: बहुत
2: गया
0: बहुत
2: होगा,
0: बहुत बहुत
2: बहुत
0: बहुत
2: बहुत
0: बहुत
2: शुक्रिया।
0: धन्यवाद आपका, आपने
2: हाँ, तो हम बात कर रहे थे, धर्मेंद्र जी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और जैसा कि नंदिनी जी हम आगे बढ़ते हैं, मैं पूछने वाली थी आपसे कि योग का समय, लेकिन उससे पहले जैसे अभी बच्चों के बारे में जैसे

0: विद्यार्थियों के बारे में या छोटे बच्चों के बारे में जो बात हुई, तो क्या योग को विद्यालयों में जैसे या फिर कॉलेजेस में उसको दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं क्या?
1: ज़रूर बना सकते हैं। जैसे कि हम बच्चे लोग के लिए स्पेशल योगा सेशंस करवाते हैं यहाँ के सभी स्कूलों पे, बट हम तो ये भी आशा करते हैं कि जैसे कि असेंबली पीरियड हो जाते हैं, जैसे कि सुबह के समय पे बच्चे असेंबली में जुड़ जाते हैं, वह उस टाइम में ही थोड़ा सा योग अभ्यास अगर उनको करवा देते हैं, जैसे पीटी पीरियड यूजली उनके लिए होता है,
0: होता
1: उस
0: है।
1: पीरियड में अगर हम एक योगा अभ्यास के साथ साथ प्राणायाम या अन्य चीज़ सिखाया जाता है, तो उनके लिए बढ़ते बच्चे लोग के लिए मेमोरी पावर, कॉन्सेंट्रेशन, भूलने की चीज़ें या हाइट की जैसे समस्याएं आती
0: समस्याएं
1: हैं,
0: आती है,
1: या बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि एग्जाम्स के टाइम में बहुत सारे टेंशन
0: एंजाइटी
1: होते
0: टेंशन्स
1: हैं,
0: होते हैं,
1: तो वैसे चीजों से बाहर आने के लिए भी योग
0: ये
1: आपके लिए
0: हेल्पफुल हो
1: साथदायक
0: सकता है
1: रहेगा।
0: जी। तो अभी हम बात करते हैं समय के बारे में, जैसे ये कौन सा समय सही होता है योग करने के लिए? क्या कोई समय निर्धारित है या फिर हम
1: योग
0: कभी भी
1: करने
0: कर
1: के लिए
0: सकते
1: दो
0: हैं?
1: समय को हमेशा हम निर्धारित रखते हैं। तो पहला समय होता है कोई भी सुबह के वक्त, 7 बजे से पहले या 8 बजे से तो पहले ज़रूर होना चाहिए। दूसरी समय हमारी होती है शाम के वक्त, पर मैं यूजुअली सुबह के टाइम सजेस्ट करूँगी, बिकॉज सुबह के टाइम में ऐसा हो जाता है कि आप अपना काम खत्म करके रूटीन कामों में जुड़ सकते हैं। शाम के टाइम में ऐसा हो जाता है कोई कमिटमेंट हो सकता है, मेहमान आ सकता है, या किसी चीजों पे आप फंस
0: फंस
1: जाते होगे,
0: सकते हैं
1: तो
0: जी,
1: उसके वजह से आपका का योग
0: रूटीन
1: अभ्यास
0: सेट
1: छूट
0: नहीं
1: सकता है।
0: जी,
1: तो
0: बिल्कुल
1: सुबह मेरे लिए सजेशन मैं यही करूंगी कि आप लोग सुबह ही अपना काम कर ले।
0: जी। तो आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि योग करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि होते हैं ना कि बीच बीच में पानी पी लिया या जैसे भी होते हैं, वो क्या नहीं करना चाहिए?
1: अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँ कि पहले जब योग मैट में आते हैं उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि आप कोई भी कंफर्टेबल कपड़ा पहने, बहुत टाइट कपड़ा या आप जिसमें कंफर्टेबल नहीं है वो कपड़ा को ना पहने।
0: नहीं पानी।
1: बहुत खाने के बाद अब योग अभ्यास ना करें, एटलीस्ट खाने का 2 घंटा के बाद ही अब योग अभ्यास करें। और अगर आप बीमार हैं, बहुत ज़्यादा आपको फीवर है या बुखार है, आप बहुत वीक फील करें, तो योग अभ्यास आप ना करें। जब भी आप योग अभ्यास करते हैं तो एक साफ सुथरा माहौल में ही आप उसको शुरू करें। अगर बहुत ज़्यादा बंद कमरा में बैठ के आप योग अभ्यास ना करें तो आपको थोड़ा सा सफोकेशन या घुटन महसूस हो
0: हो
1: सकता है।
0: सकता है जी।
1: खुले खुले मैदान में साफ जगह पे ही करें। जब भी आप योग अभ्यास के लिए आते हैं तो ज़रूर योगा मैट, दरी, नहीं तो किसी प्रकार के क्लॉथ का इस्तेमाल नीचे करें। डायरेक्ट जमीन पे लेट कर आप योग अभ्यास ना
0: न
1: करें।
0: करे जी।
1: योग अभ्यास के तुरंत चाय पीना या उसके बाद कोई भी प्रकार के नाश्ता तुरंत खा लेना, वो चीज़ों को भी आप ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं।
0: जैसे हमने बात कर ली बच्चों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, तो महिलाओं को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं ना? तो महिलाओं के लिए ये जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर योग कैसे उनका साथ दे सकता है, क्योंकि आप भी महिला है, आप भी एक बिजी स्केड्यूल से गुजरती हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपने टाइम को?
1: जी देखिए, महिलाएं के लिए योग तो एक बून है, मतलब उनके लिए एक वरदान है
0: जी।
1: कि जो उनको भी लगता है कि मैं बहुत काम से गुजर रही हूँ, या मेरे पास यूजुअली 30 उम्र के बाद लड़कियों पे वो चेंजेस दिखने लग जाते हैं,
0: जी
1: जैसे वीकनेस, या बहुत सारी लड़कियों को 35-40 उम्र में लगने लगता है कि मैं अब ओल्ड हो गई हूँ, मतलब मेरा उम्र ख़त्म होने लग
0: खत्म
1: गई है,
0: होने को
1: मेनोपॉज
0: है।
1: का स्टेज हो गया, मैं और उतना फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही हूँ। पर
0: हाँ
1: ऑल इन वन, अगर आपको हमेशा से बॉडी में बूस्ट चाहिए तो आप योग का अभ्यास ज़रूर कर लीजिए।
0: बिल्कुल
1: अभी भी अगर कोई महिलाएं हैं जहाँ पे इतने साल से उन्होंने कभी भी योग को अपने जीवन शैली में नहीं अपनाया है, तो ये इसी वक्त आप अपनाइए, आपको बहुत ज्यादा चीजों से एक्सपीरियंस मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी में एनर्जी रहेगा, किसी प्रकार की चिंता, बेचैनी अगर आप दिन से दिन गुजर रहे हैं उसको पार करने की जो क्षमता है वो आपकी बदन कल्टीवेट हो सकता है।
0: जी
1: इवन कोई जोड़ों में दर्द होता है या बहुत सारा स्ट्रेस है, मल्टीपल काम को आपको एक साथ ये करना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो चीज को सीखने के लिए भी आपको योग बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है।
0: बिल्कुल
1: तो महिलाओं के लिए एक वरदान है, जो महिला इसको अपने लिए अपना लेती है तो वो उनका लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है।
0: जी। तो आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो ऑफिस आवर्स में जो ज़्यादा टाइम जैसे लॉन्ग टाइम तक बैठ के काम करते हैं, तो उनको ऐसे क्या योग अभ्यास करने चाहिए जिससे उनको फ़ायदा हो?
1: आजकल हम बहुत कॉमनली देखते हैं

0: इवन मेरे ओपीडीज में भी हमने देखा है, जो लोग भी ऑफिस सेक्टर में बैठते हैं उनको
1: जी।
0: सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबार स्पॉन्डिलाइटिस या उनका कर्वेचर थोड़ा सा बेंड ही हो जाता है। साथ ही साथ में ओवर सिटिंग बोला जाता है कि अगर कोई इंसान अगर 2 घंटा 3 घंटे एटलीस्ट 3 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली बैठता है तो उनको मधुमेह का बीमारियाँ होने का चांसेस 50% से भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसी स्थिति या ऐसी समस्या में हमें हमेशा से योग को अपनाना चाहिए।
1: जी
0: मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक सिंपल वाई ब्रेक टेक्निक को अपनाया है और इंट्रोड्यूस भी किया है। वाई ब्रेक का मतलब होता है योगा ब्रेक, जैसे कि हम टी ब्रेक, समोसा ब्रेक, जो भी प्रकार के लंच ब्रेक लेते हैं
1: यस यस
0: उसी तरह वाई ब्रेक होता है। इसमें लगभग एक 5 से 7 आसन होते हैं और 3 प्राणायाम होते हैं जिसको हम लोग हर ऑफिस सेक्टर में जाके सिखाया जाता है,
1: जी
0: जो चेयर में ही बैठ के किया जाता है। तो
1: जी
0: आपको इसके लिए कोई योगा मैट, दरी या स्पेशल यूनिफॉर्म ढूंढने की कोई
1: कोई
0: ज़रूरत
1: जरूरत
0: नहीं है।
1: नहीं है।
0: जो ड्रेस कोड में आप ऑफिस जाते हैं वहीं पे बैठ के कर सकते हैं। ये आपको मतलब स्ट्रेस से रिलीज करने में, अपने बॉडी को एक ब्रेक दे के रिजुनेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है।
1: जी
0: तो जो भी अभी तक सीखे नहीं है वो हमारे केंद्र को ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे यूनिट को भी, ताकि हम लोग अपने डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं या कोई ऑफिस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें ताकि हम लोग योग को आपके लाइफ तक बता सकते हैं।
1: जी, जैसे कि अभी आपने बताया और ये जो बताए जो आपने उस वो हमारे इस साल के जो थीम है उससे बहुत मैच करता है, जैसे स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए
0: जी
1: योग
0: जी
1: ना, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो अभी आपने जैसे बताया तो वो थीम एकदम सटीक बैठ रही थी। तो इस बीच में एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आगे हम जानेंगे। हेलो,
2: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार सर, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हेलो, मैं केशव दिल्ली से बोल रहा हूँ
1: हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है जी, अपना प्रश्न पूछें।
2: मैम। मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, जैसे कि जैसे लड़कियों की आंखों के नीचे कालापन हो जाता है या लड़कों के तो तबीयत खराब हो जाती है तो आंखों में एकदम ऐसा लगता है चेहरे का एकदम मुरझाया हुआ सा, तो ऐसा कौन सा योग करना चाहिए जिससे चेहरा एकदम खिल उठे और मतलब साफ हो जाए, एकदम चमक उठे, आंखें चमक उठे, मतलब आंखें बड़ी हो जाए और चेहरा चमक उठे।
1: जी
2: दूसरा सवाल ये है, शीर्ष आसन हमारे खाली पेट करना चाहिए या खाना खाने के बाद करना चाहिए?
0: कौन सी आसन, कौन सी आसन का?
1: चलिए उनसे
0: पहला
1: उनका
0: सवाल तो
1: प्रश्न।
0: उनका ये था कि जो आईज के नीचे, आँख के नीचे में जो भी कालापन हो जाता है वो स्ट्रेस के वजह से या प्रेशर के वजह से होने का संभावना है। तो जैसे भी ऐसा होता है वो तो जो भी मैंने पहले भी बोला था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारे टाइम में ऐसा लगता होगा कि हमें बहुत प्रेशर नहीं है क्योंकि कॉन्शियस माइंड में हमको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सेम चीज़ दौड़ते होंगे हमारे
1: दौड़ते होंगे।
0: दिमाग में।
1: हाँ
0: उसी प्रकार के जो लोग को नींद अगर कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नींद नहीं होता है या सोने नींद की बीमारियां होते हैं, उनको भी आंखें के नीचे ऐसे होने का संभावना
1: संभावना
0: बहुत
1: हो
0: ज़्यादा है।
1: जाती है।
0: तो हम उनको योग निद्रा सिखाते हैं और प्राणायाम टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा मदद करवाते हैं
1: जी
0: ताकि उनका नींद का कैपेसिटी अच्छे से बढ़ जाए। और जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा में एक होता है जिसको हम बोलते हैं मड पैक, मतलब अपने कपड़े को एक तो आप पानी में भिगा के अपने आंख के ऊपर रखे ताकि ठंडक महसूस होगा, उससे आप भी रिजुविनेट कर सकते हैं। नहीं तो मट्टी के लेप लगा के कपड़ों पर लपेट के भी लग सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा आपको मदद हो सकता है। और
1: जी
0: उन्होंने बोला था कि कौन सा ऐसे आसन है जो खाने की तुरंत कर सकते हैं, वो है वज्रासन। वो ऐसी इकलौती आसन है जिसको हम लोग ना खाना खाने के बाद कर सकते हैं बिकॉज वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी
1: हाँ
0: हेल्प
1: हेल्प
0: करती
1: होती
0: है।
1: है। जी
0: बाकी आसन तो मैं कोई भी आसन सजेस्ट नहीं करूंगी जो आप खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 घंटे के गैप तो आप खाने के बाद देना ही चाहिए अपने
1: बिल्कुल
0: हेल्थ को डाइजेस्ट होने के लिए।
1: जी, जैसे अब खान पान की बात चली रही है तो हम इसमें जान लेते हैं कि जो हमारी जो आज की जो खान पान की आदतें हैं उसको हम कैसे बदल सकते हैं योग के माध्यम से।
0: जैसे कि आज के खान पान की ज़्यादा जो अगर आप आदतें को बदलने की जब बात करते हैं तो हमेशा से फिक्स रहना चाहिए कि आपको डिटरमाइन करना है।
1: जी
0: जैसे कि हेल्थ सेक्टर में ऐसे एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पेशेंट को ठीक होना है तो जब तक वो पेशेंट ठीक नहीं होना सोचता, आप कितना भी दवाई दे दिया या आपने कितना भी मॉड्यूलेशन कर दिया, आप
1: हाँ
0: ठीक नहीं हो सकते हैं।
1: मतलब ये
0: उसको
1: हमारा दृढ़
0: बोलते
1: निश्चय होना
0: जी,
1: चाहिए
0: तो
1: पहले।
0: उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनसाइट, जिस तरह हम बोलते हैं कि उसको कितना पता है उसको ऐसे बीमारी है और वो कितना
1: हाँ
0: चाहता है कि उसको ठीक होना है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।

0: खान पीन की बात करते हैं, इन जिसको भी लॉन्ग टाइम के लिए अगर ऐसे फास्ट फूड या मतलब अनहेल्दी चीज़ों को खाने की आदत होती है, मैं उनको यही सलाह दूंगी कि डिटर्मिनेशन लाने से पहले आप ये ज़रूर लीजिए कि एक साथ आप मत रोकिए, तब आपको क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि सोचिए बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग से वेट लॉस इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। एक दिन हम खाते हैं, फिर हमें लगता है कि आज संडे है, चीट डे है, हम जितना खा सकते हैं खा सकते हैं, फिर वो डिटर्मिनेशन खत्म हो जाता है
1: खत्म हो
0: वहीं पे,
1: जाता है।
0: और वो कंसिस्टेंटली जो हम लोग कर रहे थे वो नहीं रह पाता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी अगर आप हफ्ते के 3 दिन या 4 दिन बाहर में जाके आप कंटिन्यूसली जंक खा रहे हैं, तो वो 4 दिन में एक दिन कट कर दीजिए। ऐसे जाते जाते
1: धीरे धीरे
0: तीन
1: से
0: चार
1: उसको,
0: महीने के बाद आप पूरे ही
1: हाँ,
0: कम कर सकते हैं, वो आपको लाभ देगा।
1: क्योंकि जैसे हम बात करते हैं हेल्थ कॉन्शियस होने के बारे में, जैसे कॉन्शियस होते हैं हम, जैसे आपने बताया, हम एक ही बार में सारी चीज़ों को कट करते हैं
0: खत
1: तो
0: कर देते,
1: क्रेविंग बढ़
0: बढ़
1: जाती है
0: जाता है,
1: और वो जो हमारा रेजोल्यूशन हो कभी पूरा नहीं
0: नहीं
1: हो
0: हो
1: पाता
0: पाता।
1: है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं फिटनेस के बारे में जब भी बात आती है तो जो यंग जनरेशन है वो सीधे जिम वगैरह की तरफ में आकर्षित है, तो उनको आप जिम और योग को हम कैसे एक साथ लेके चल सकते हैं?
0: मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये बहुत श्योर हूँ कि अगर कोई मोटिवेट होके जिम जा रहा है तो वो कंटिन्यूसली जिम जाए, अगेन 6 मंथ्स के लिए जिम जाके छोड़े नहीं। एक अच्छा मोटिव है कि वो फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कुछ भी फॉर्म में वो जा रहे हैं, भले वो स्पोर्ट्स हो या स्विमिंग हो या जिम हो। बट अगर आप आसन एक्सरसाइज और अगर योग के बारे में डिफरेंसेस पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि योग में हम पहले भी बोले थे कि आपको जो करना है आपको पूरे अवेयरनेस के साथ करना है, बट आप जब एक्सरसाइज करते जिम में जाके तो आपका अवेयरनेस कहीं नहीं रहता है, यू जस्ट गो ऑन वर्कआउट। दूसरी बात होती है कि आपको ब्रीदिंग का कैपेसिटी आप आसन में लाते हो, बट जिम में या एक्सरसाइज में वो चीज आपका नहीं रहता है,
1: जी
0: तो एक्सरसाइज में वो चीज वो नहीं रहता है, वो स्किप हो जाता है।
1: जी
0: तो वो जो चीज है, और बॉडी में योग में क्या है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना आपका मेन मकसद होता है,
1: बिल्कुल।
0: बट वहां पे आपका फ्लेक्सिबिलिटी का पर नहीं है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं, ये चीजें सब देख सकते हैं।
1: जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कार्यक्रम का समय भी समापन की ओर है, एक बिगनर्स के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो योग अभी शुरू करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना
0: बिगनर्स
1: चाहेंगे?
0: के लिए मैं ये टिप्स दूंगी कि कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए कभी लेट मत कीजिए, आपका हमेशा से हमारा दरवाज़ा खुला रहेगा, आप कभी भी आके योग का अभ्यास कर सकते हैं। और योग सीखने के लिए कोई एज ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी उम्र में योग सिखा सकते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सकते सिखाइए। अगर अभी एक 40 उम्र के लोग सीखना चाहते हैं तब भी सीख सकते हैं, 25 के सीखना चाहते तब भी सीख सकते हैं, यहाँ की 5 साल का बच्चा सीखना चाहते हैं तब भी आप सीख सकते
1: सीख
0: हैं,
1: सकते हैं,
0: सबका उम्र के अनुसार हमारा योग अभ्यास अलग-अलग किया जाता है।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर नंदिनी, कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो योग अपनाने के जो इच्छुक जो श्रोता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी, अपनी तरफ से क्या हेल्थ टिप्स होंगी,
0: आज के जितना
1: बहुत
0: बीमारियां,
1: संक्षिप्त में बताएं।
0: जी जितने भी आज के जीवन में बीमारियां बढ़ती जाती है, और आज के लाइफ में अगर आपको स्वस्थ रहना है और आपके पास खुश रहना है, तो आप ज़रूर योग को अपने जीवन शैली में अपनाइए
1: जी
0: और हमेशा से खुश रहिए, साथ ही साथ में स्वस्थ रहिए।
1: जी जी डॉक्टर नंदिनी, आप कार्यक्रम में अपना कीमती समय लेकर आई और योग के बारे में इतनी विस्तार जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुन रहे थे। विषय था निरोग जीवन का दैनिक मंत्र योग। विशेषज्ञा थी डॉक्टर नंदिनी, मेडिकल ऑफिसर योगा एंड नेचुरोपैथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सीमा, तकनीकी सहयोग दिया वी श्रीनिवास आचार्य और सौरभ दास ने, तथा कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशिला।

0: आपका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
5: पीएम किसान।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
8: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
7: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण परियोजना

0: का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। चंदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष

0: मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: We have been able to achieve that in the first.
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: They are all designed in India now.
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज

लेकिन तैयार रहिए इसमें आप, नए बहलाओं के साथ कोशिश करूंगा मैं, जो कि कोशिश करूंगा जो अलग होंगे, जो आप लोगों की टेपों में नहीं हो शायद।

तेरी हर चाप से, यानी हवा के झोंके से कुछ पत्ता हिलाया, पर्दा हिल गया, आहट आहट की चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से चलते हैं ख्यालों में चिराग, इन्हें खुशी कि शायद महबूब आ गया।

श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और आज के हमारे कलाकार हैं मेहदी हसन।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के समय 9 बजे हैं और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं नाम फिल्म से, पंकज उदास और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए इजाज़त फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज़ में। गुलजार के शब्दों को संगीत से सजाया राहुल देव बर्मन ने।

0: Vikram Stadium in Chennai when reports last came in. Earlier, visitors won the toss and elected to bat first. Hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the three-match series. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunhac starred for the five-time world champion, scoring twice in the first half. Vinicius Jr. added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi joins President Draupadi Murmu in Odisha to inaugurate projects worth over 47,600 crore rupees. Government prohibits manufacture, sale and distribution of 16 fixed dose combinations in public interest. NTA conducts nationwide mock drill ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In cricket, third and final ODI between India and Afghanistan underway in Chennai. And in FIFA World Cup, Brazil registered their first win, defeating Haiti 3-0. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी, खुंटिया जी,

0: कृष्णचंद्र महापात्र जी सांसद, नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।

0: बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551

0: उन शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश

0: ये संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम।
3: ४३८.६ मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: श्रोताओं, सुरों और गीतों से सजी हमारी यह नॉन स्टॉप म्यूज़िक अब यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।
1: नॉन स्टॉप म्यूज़िक।

FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 3:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इसके बोल जावेद अख्तर के लिखे हैं, जबकि संगति की अनु मलिक ने।

फिल्म कोई मेरे दिल में है का गीत। इस गीत को स्वर दिए हैं अदनान सामी और आशा भोसले ने। शब्द है फैज़ अनवर के, धुनों को सजाया है निखिल यादव ने।

नमस्कार, मीडियम वेव 438.... नमस्कार, मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी किए जाने संबंधी कार्यक्रम का पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से सीधा प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगी। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगी। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है जिसमें राज्य में प्रधान

0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information, Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, as the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District gram panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this

0: champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद ख़ास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल की विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है ये। 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
2: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is

0: बेहद खास है और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य संगीत कला को एक एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government, which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise. We see many promises together. We see an actual execution of the Digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, Jee. The following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are doing so many steps. We are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
1: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers, and

0: Then, when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Viksit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है, और एक सरकार की एक जो नई पहल है देश में, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको ख़त्म किया जा रहा है, ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसे सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद, या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है, या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है, कि देश में ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ें, ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है, कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉइल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर।
0: Absolutely, Siddharth, the word that you've used, and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere, completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap atmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments, who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
1: इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं, 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
0: माननीय
1: मोदी जी
0: प्रधानमंत्री जी का
1: हमारे
0: मंच
1: बीच में
0: पर
1: उपस्थित हैं
0: आगमन
1: और
0: हो
1: हम
0: रहा
1: उनका
0: है और वो
1: हार्दिक स्वागत
0: मंच पर
1: और
0: पहुंच
1: अभिनंदन
0: गए हैं,
1: करते हैं।
0: और चारों
1: पश्चिम
0: तरफ
1: बंगाल
0: से
1: दिवस मनाने
0: ये
1: के
0: लोगों की
1: अलावा आज
0: आवाजें,
1: माननीय
0: उनको अभिवादन
1: प्रधानमंत्री
0: करते
1: श्री
0: हुए,
1: नरेंद्र
0: उनका
1: मोदी जी
0: स्वागत
1: ने
0: करते हुए
1: विभिन्न
0: लोग यहाँ पर
1: मंत्रालय
0: खड़े
1: की
0: हुए
1: कई
0: हैं, और माननीय
1: परियोजनाओं का
0: प्रधानमंत्री महोदय ने
1: शुभारंभ
0: अपना
1: उद्घाटन
0: स्थान ग्रहण
1: तथा
0: कर लिया है
1: राष्ट्र
0: और
1: को समर्पण करेंगे।
0: The Honorable Prime Minister
1: मुझे
0: on the
1: विश्वास है
0: stage,
1: कि
0: sitting
1: भविष्य में
0: along with the Governor of West
1: राष्ट्रोत्सव
0: Bengal, Sri
1: और
0: Arun Ravi, and the Chief Minister
1: इंटरनेशनल
0: of West
1: इवेंट
0: Bengal,
1: में
0: Sri
1: कुछ
0: Suvendu Adhikari,
1: हजारों
0: people
1: वन अनाउंसमेंट
0: craning
1: प्लीज
0: their necks
1: राइज
0: now,
1: द नेशनल सॉन्ग
0: the
1: एंड द
0: national
1: नेशनल एंथम
0: anthem and the national song.

0: धन्यवाद.
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी
2: रसगुल्ला और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम. भारत केसरी लौह प्रणाम.

अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ

0: विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस स्कीम इज नाउ ऑपरेशनलाइज्ड, इज फंक्शनल, इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। And now, the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is, on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. Manch par virajman, Rajpal R.N. Ravi ji. यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में

खुशी और विश्वास का भाव मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी, और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को

मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी

उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकार

सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले

मंगोलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झारग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फ्रेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद

0: और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो, आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे-धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:34:30 हुए हैं। अब आप सुनिए बांग्ला कार्यक्रम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम शुरू होच्छे आजकेर बांग्ला अनुष्ठान। श्रोता बंधुरा, श्री रामकृष्ण बोलेछेन, प्रेम और भक्ति दिए जीवन के पूर्ण करो, तभी सत्यिकारे शांति पावा जाए। श्रोता बंधुरा, पालन करा होच्छे योग दिवस, ताई आजकेर आमार आलोचनार विषय हलो नारीदेर सुस्थ बार्धक्य एवं योग व्यायाम। बयस बाड़ा जीवनेर एकटी स्वाभाविक प्रक्रिया, किन्तु सुस्थभावे बार्धक्ये पौंछानो आमादेर जीवनयात्रार ओपर अनेकटाई निर्भर करे। नारीदेर क्षेत्रे बयस बृद्धिर संगे संगे हाड़ेर घनत्व कमे जावा, जयेंटे ब्यथा, हरमोनगत परिवर्तन, मानसिक चाप एवं विभिन्न स्वास्थ्यगत समस्या देखा दिते पारे। एई समय योगव्यायाम एकटी कार्यकर ओ निरापद सहायक हिसेबे काज करे। नियमित योगाभ्यास शरीरेर नमनीयता बजाय राखे, पेशीके शक्तिशाली करे एवं भारसाम्य रक्षा करते साहाज्य करे, फले पड़े जावार झुंकि कमे। एछाड़ा प्राणायाम ओ ध्यान मानसिक प्रशांति देय, उद्वेग ओ हताशा कमाते साहाज्य करे। योग व्यायाम रक्त संचालन उन्नत करे, हृदय यंत्रेर कार्यक्षमता बाढ़ाय एवं रोग प्रतिरोध क्षमता शक्तिशाली करे। एर फले नारीरा बयस बाढ़लेओ कर्मक्षम ओ आत्मविश्वासी थाकते पारेन। सुस्थ बार्धक्य माने शुधु दीर्घ जीवन नय, बरं आनंदमय, स्वाधीन एवं सक्रिय जीवन। आर सेई लक्ष्य अर्जने योग व्यायाम होते पारे प्रतिदिनेर अन्यतम सेरा संगी। শ্রোতা বন্ধুরা, অনুষ্ঠানে আপনাদের জন্য আজ রয়েছে সাক্ষাৎকার এবং কিছু ছায়াছবির গান। তাহলে আসুন প্রথমেই শোনা যাক গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস, ওনার সাথে একটি সাক্ষাৎকার।

0: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के तहत आप पशुपालक महावीर नगर पात्रापुर निवासी श्री लाल बहादुर यादव से की गई बातचीत सुनेंगे।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को आंचल का प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, विजेता की परिभाषा है वह जिसने प्रयास किया। कहने का तात्पर्य है कि जीतने वाला व्यक्ति वह होता है जो चुनौतियों से बचने के बजाय उनका सामना करता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी भी हर चुनौती का सामना डट कर करते होंगे, और इसी उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और पूछ लेते हैं आज का प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार है। गंधी कीट किस पौधे को प्रभावित करता है? और हम आपको तीन विकल्प देते हैं। पहला है बैंगन, दूसरा पपीता और तीसरा धान। किसान साथियों, हम प्रश्न पुनः दोहराते हैं। गंधी कीट किस पौधे को प्रभावित करता है, बैंगन, पपीते या धान की? तो ये रहा आज का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए, कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
2: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, आइए अब आपको मिलवाते हैं महावीर नगर भातु बस्ती के रहने वाले श्री लाल बहादुर यादव जी से, जो कि एक पशुपालक हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनसे की गई बातचीत। किसान साथियों, आइए आपको मिलवाते हैं लाल बहादुर यादव जी से, और ये एक पशुपालक हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। नमस्कार लाल बहादुर जी।
4: नमस्कार।
3: तो लाल बहादुर जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, कौन से पशु आप पालते हैं?
4: हम गाय और भैंसी दोनों पालते हैं
3: जी,
4: और उसके बाद में फिलहाल 2 बकरी भी हम रखा है किसानी के मामला में। और मेरा घर में कोई सर्विस वाला नहीं है, हम लोग इसी पे जीता है
3: जी। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो गाय भैंस और बकरी है,
4: हाँ,
3: उसको आप कैसा पालते हैं?
4: पैसे मतलब उसके है कि थोड़ा खोलते हैं, थोड़ा दाना फाना भी मुश्किल है, बाकी कहीं से भी जुगाड़ करके कपिला पशु आहार मतलब 1600 रुपया बस्ता लेके उसके देता है, क्योंकि पेट तो पालना है।
3: कहाँ से लेते
4: हम लेता है? 4 नंबर से भी लेता है और दूसरी बात की कालीघाट चौक से भी।
3: तो कितने गाय हैं आपके पास? गाय भैंस और बकरी आपने कितने पाल रखे?
4: अभी हम फिलहाल गाय मेरा पास 2 है
3: जी,
4: बकरी 2 है और भैंसी 4 है
3: जी। जो पशु पालक गाय पालते हैं ना, उनका एक ही मोटिव होता है, दूध मिलता है और उससे बेनिफिट आता है। लेकिन भैंस से आपको क्या बेनिफिट
4: आता
3: है?
4: उसमें भी बेनिफिट आता है, भैंसी का दूध भी हम बिक्री करता है
3: जी।
4: तो उसमें हमके क्या होता कि जैसे भैंसी का दूध है तो उसमें हमके थोड़ा रेट जो 100 रुपया है, 110 रुपया रेट हम देता है।
3: मतलब गाय का जो दूध है उससे थोड़ा बढ़ा के आपका भैंस का दूध का रेट है।
4: हाँ जी।
3: और ये क्यों इतना रेट इसका बढ़ा है कि दूध में ऐसी क्या बात है कि उसका रेट ज्यादा है गाय के?
4: प्रोटीन ज्यादा है उसमें
3: जी,
4: उसमें प्रोटीन गाय से ज्यादा है
3: जी।
4: इसके वजह से हम लोग मतलब पहले हम भैंसी रखा था, उसके बाद में गाय का मतलब कोई दूध पूछ दिया तो फिर गाय का दूध होटल में देने से भी वो मतलब 100 रुपया से नीचे नहीं, बाकी गाय का दूध 80 रुपया से ऊपर नहीं जा रहा है
3: जी। मतलब भैंस के दूध के भी डिमांड है आपके?
4: हाँ,
3: यहाँ पे
4: डिमांड
3: है। जैसे आप बता रहे हैं आप गाय भैंस और बकरी तीनों पालते हैं ना, तो ये तीनों के रहने की व्यवस्था आपने कैसे कर?
4: व्यवस्था मतलब गाय का सेट है
3: जी,
4: बना दिया है वो लोग, गाय लोग मतलब सेट में रहती है। बकरी है उसके भी घर है, 2 बकरी तो कहीं भी मतलब घर में रह सकती है। अब फिलहाल भैंसी लोग है उस लोग बाहर में रहता है।
3: तो इसकी देखभाल कैसे करते हैं? जैसे उनको नहलाना होता है, कहीं चराना होता है तो कैसे?
4: तो उसके हम वही तो परेशानी है,
3: मतलब मुश्किल
4: क्या मुश्किल होता है। आप पकड़ा गई तो 2200 रुपया बच्चा का दे दो।
3: अच्छा।
4: फिर भैंसी पकड़ा गई तो उसके भी पैसा दो
3: जी।
4: उसमें अभी फिलहाल मतलब अभी 4 भैंसी में एक ही भैंसी दूध देती है। अच्छा, 2 गाय दूध देती है, थोड़ा एक गाय बच्चा दिया, एक गाय मतलब दूध देती है। अभी मुश्किल से 6 लीटर दूध मतलब शाम का सेलिंग होता है
3: जी जी,
4: और सुबह में 8 लीटर बस
3: जी।
4: ऐसे एसी में अपना घर का खर्चा चलाना है। और तो हमके ये उम्र में तो कोई नौकरी फुकरी तो मिलना नहीं है।
3: अच्छा यादव जी, आप ये बताइए कि क्योंकि आप गाय भैंस और बकरी पालते हैं, तो क्या आप कृत्रिम गर्भाधान यूज करके AI का जो नया टेक्निक है उसे कभी आपने यूज करके आगे अपने पशुओं को बढ़ाया है?
4: पशु के आगे मतलब जर्सी गाय लोग के आगे बढ़ाता है
3: जी,
4: भैंसी लोग भी क्रांसी मतलब कराया था, वो जो मिनी वेक से जो फार्म से भैंसी लिया था उसी का क्रासिन हो।
3: अच्छा, मतलब आपने कभी कृत्रिम गर्भाधान ट्राई नहीं किया?
4: नहीं
3: जी। फिर भी आप कभी फ्यूचर में सोचते हैं, क्योंकि आपके पास गाय भैंस तो है, लेकिन कभी आपने इन्हें बढ़ाने का सोचा है?
4: बढ़ाने का सोचता है तो करने वाला हम अकेला है, तो हम फिर बीच में
3: मुश्किल।

0: रहता, अपना जीने के तरीका में हम अपना कर रहा है,
1: जी
0: क्योंकि ज्यादा जानवर रखने से भी मुसीबत
1: जी
0: है।
1: तो अब चलिए दानेचारे की बात करते हैं। तो आप पशुपालक हैं जो कुछ
0: दाने में उस के मतलब हम जैसे काला चना हुआ
1: जी
0: और उरुद उरुद का छिलका हुआ और मतलब थोड़ा बहुत मक्का डाल के और कपिला पशु आहार डाल के सब मिक्स करा के
1: जी
0: उस जानवर के मतलब हम दे रहे
1: देते
0: हैं।
1: हैं
0: न पुआर मिलता है न बिचाली मिलता है, वो अपना मतलब अपना मेहनत से दो मुट्ठा घास काट के लेके एक गट्ठा घास दो गट्ठा घास काट के कहीं से कबाड़ियों बड़े से लेके आके वो उस लोग के देता है।
1: अच्छा जी। और देखिए गाय भैंस और बकरी जो है ना, इनको जैसे आपने बताया कि आपने शेड बनाया है, सबकी व्यवस्था रखी है, तो साफ सफाई का कितना आप ध्यान रखते हैं
0: हम
1: वो
0: पूरे
1: बता
0: पूरे
1: दीजिए।
0: साफ सफाई मतलब इतना साफ सफाई कि जैसे मतलब अपना जो घर है उसे भी अच्छे सफाई करके रखेगा जानवर के, क्योंकि एक चोट गोबर फेंक दिया तो हम खाना भी खाते रहेगा बाकी उसके जाके सफाई करेगा, क्योंकि वो मेरा जीविका है
1: जी
0: वही मेरा जिंदगी है। हाँ
1: भैंस की बात कहेंगे कि बहुत सारे किसान साथी भैंस में जब बेनिफिट है तो उसे पालते क्यों नहीं है।
0: जिसका मन नहीं है पालने का तो उसके तो कुछ भी नहीं बोल सकता है, बाकी हमके भैंसी में जितना बेनिफिट है उतना गाय में कम है। अभी
1: जी
0: बारिश का मौसम होगा गाय का दूध कम मिलता है,
1: अच्छा
0: भैंसी का दूध ज़्यादा मिलता है,
1: जी
0: बाकी हम बोल के देता है कि भैंसी का दूध हम दे रहा है।
1: जी जी
0: ये नहीं
1: बिल्कुल
0: है कि हम ऐसे बोलेगा कि नहीं हम भैंसी का दूध देता है गाय का दूध बोल के, ऐसा नहीं है।
1: जी बिल्कुल। मतलब अगर पशुपालक आपसे सीखें, बहुत सारे पशुपालक क्या करते हैं केवल गाय पालते हैं, उसमें उनको लॉस भी होता है, लेकिन आप जो हैं कि बैलेंस करने के लिए भैंस भी रखे हैं, और इसका वजह से जब
0: अब गर्मी का टाइम में
1: जी
0: गाय का दूध क्लाइमेट से ज़्यादा बढ़ता है
1: जी
0: और भैंसी का दूध बारिश में ज़्यादा होता है।
1: जी तो उसमें आपको क्या हो जाता है, धूप काल और बारिश के दिनों में आपका जो
0: हाँ मेरा
1: बिजनेस
0: काम
1: है
0: हो रहा है
1: वो बराबर
0: जी
1: चलता रहता है।
0: जी
1: जी तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या गायों का खाना या दाना चारा आप अलग रखते हैं और भैंसों को अलग देते हैं,
0: हाँ
1: तो इसमें थोड़ी बताइए कि आप भैंसों को क्या देते हैं
0: भैंसी
1: खाने
0: को
1: में।
0: देते हैं जैसे मतलब गेहूँ अपना जैसे मिल गया और जैसे मक्का है धान का भूसी डिगलीपुर से आता है तो
1: जी
0: उसके हम लोग मिला के भैंसी
1: जी
0: का अलग रख देते हैं,
1: जी
0: और गाय का जो है तो वो भैंसी जो कपिला पशु आहार है ना वो
1: जी
0: भैंसी नहीं खाएगी
1: जी जी
0: क्योंकि वो माँ केमिकल रहता है और गाय खा लेती है।
1: तो दिगलीपुर से जैसे आपने अभी बताया कि भूसी आप मंगाते हैं, तो ये कैसे आपने कांटेक्ट किया, कैसे आपको पता चला
0: जैसे
1: कि वहाँ से
0: वो
1: मंगाना
0: बंदा
1: है।
0: वहाँ से लेके आता है
1: जी
0: तो वो उसके से दुकान से हम लोग लेते हैं।
1: जो दाना में आप पैसे खर्च करते हैं ना, क्या वो दूध से आपको बेनिफिट मिल पाता है, प्रॉफिट होता
0: पेट
1: है।
0: पेट जी जाता है पेट जीता है, कोनो महीने में 2,000 बच गई कोनो महीने में 5,000 बच गई कोनो महीने में नहीं भी बचा कर्जा भी हो गई कोनो
1: बिल्कुल
0: महीने में 10,000 बच गया। अब बेनिफिट ये होता है कि जैसे गाय है उसका बच्चे है
1: जी
0: बच्चे से भैंसी है उसके बच्चे है तो जो भैंसी तनी उम्र हो गई तो किसी के दूध वाला मांगा कि भैंसी हमके मांगता
1: जी
0: प्रेग्नेंट
1: जी
0: भैंसी है चाहे दूध देती है तो वो खरीद के लेके जाता है तो वही हमके बेनिफिट ही
1: तो कैसे आप बिक्री करते हैं बताइए।
0: है। हम बिक्री करते हैं तो मतलब जैसे दूध के ऊपर है दूध को उत्पादन जितना होता है जैसे भैंसी 4 लीटर दूध देती है तो उसका दाम कम से कम नॉर्मल 40,000 से ऊपर
1: जी
0: जाएगा नीचे नहीं जाएगा।
1: जी
0: और गाय जो है गाय 5 लीटर दूध देती है तो नॉर्मल उसका भी 50 तक ऐसे ऊपर नहीं जाएगा,
1: जी
0: 40-50 ऐसे
1: जी
0: ऊपर नहीं जा सकती है।
1: जी
0: अब बकरी है तो बकरी में क्या होता है कि ज़्यादा मतलब बकरी हो जाता है तो हटा देता है दो
1: जी
0: ठे रख लेता है मतलब, क्योंकि बकरी का दूध जो है सबसे बड़ा है
1: कहने
0: बकरी।
1: का मतलब क्या है, बकरी का दूध आप कह रहे हैं सबसे बड़ा, इसका अर्थ
0: हाँ
1: क्या है।
0: अर्थ ये है कि उसमें जो पीलिया होती है जोंडिस बोलता है
1: जी
0: उसके बकरी का दूध वो बच्चा के पिला दिया तो वो जॉन्डिस नहीं रहेगा कोई भी
1: कोई
0: आदमी के
1: भी
0: लिए।
1: इंसान को
0: हाँ
1: जॉइंडस
0: नहीं
1: होता है तो
0: हाँ
1: बकरी का दूध पिलाने से
0: अच्छा
1: वो भला चंगा हो जाता
0: हाँ
1: है।
0: मतलब बसलेट जो उसका कम

0: गया हॉस्पिटल में,
1: जी जी
0: तो उस दवा के रूप में वो बकरी का दूध देगा, बसलेट बढ़ जाएगा।
1: जी
0: दूसरी बात कि बकरी के दूध पेट में अल्सर है, अल्सर के बाद में कैंसर होता है।
1: जी
0: तो बकरी के दूध जैसे रहेगा तो उसके पिलाने से अल्सर खत्म हो जाएगा, चोट खत्म हो जाएगा, तो को कैंसर नहीं आ सकता है।
1: जी जी जी तो लाल बहादुर जी, जैसे आप बता रहे थे कि आप गाय भैंस और बकरी पालते हैं, तो इन सब को पालने में आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं?
0: दिक्कतों हम लोग को ज्यादातर गाय में और भैंसी में दिक्कत है, चारा में दिक्कत है। दूसरी बात म्यूनिसिपल वाला जो है, हम लोग को जानवर उठा के, जैसे गाय का बछड़ा है उसके उठा के ले जाके बंद कर देता है, और रोड में ये लोग दिन के टाइम में बंद करता है, रात का टाइम बंद करने से तो कोई बात नहीं है,
1: जी।
0: दिन के टाइम में ये लोग बंद करता है उठा के,
1: जी,
0: 10 बजे 11 बजे 9 बजे इसके अंदर बंद कर देता है। अच्छा, एक बछड़ा मतलब जो बच्चा है छोटा, उसके गाड़ी में लेके जाता है वो लोग, और उसके बंद करके, और उसके तुरंत बंद करके तुरंत जाएगा 2200 रुपया गिनती करो।
1: अच्छा।
0: तो इसके तो मुसीबत है।
1: जी बिल्कुल।
0: एक तो चराग नहीं है, कहीं चरने के जानवर के घूमने की जगह नहीं है, दूसरी बात कोई उपधन चारा नहीं है कि कहीं चारा पैदा करके गवर्नमेंट देगा तो हम लोग मतलब पैसा से खरीद के उसके लिया के बिचाली चाहे काट के देगा तो हम लोग इस्तेमाल करेगा, वो भी नहीं है, तो मशीन भी मंगा के हम लोग बिचाली भी नहीं काट सकते।
1: जी मतलब चारा का प्रबंधन करने में आपको दिक्कत आ
0: रहा
1: है।
0: बहुत दिक्कत आ रही है।
1: बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन हो जाए। और जाते जाते आप अपनी ओर से लोगों को क्या कहेंगे, युवाओं को क्या कहेंगे, कोई संदेश है अपने जैसे पशुपालकों के लिए?
0: पशुपालक के हम मतलब जो भी जाता है, जहाँ भी जाता है, सब लोग के बोलता है कि भाई तुम लोग पशुपालक के सेवा करो, और सेवा करेगा तो मेवा जरूर मिलेगा। दूसरी बात कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी टाइम से चौंक नहीं पाता, जानवर जैसे बच्चा उल्टा हो गया तो वो लोग आने में बहुत लेट करता है।
1: जी।
0: अच्छा, जैसे दवाई लेने जाता है तो एक दवाई मिलता है, दूसरा दवाई नहीं मिलता है, तो ये हम लोग को मुसीबत थोड़ा हो रही है।
1: जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट है,
0: कि जितना हॉस्पिटल में जानवर का, जितना जानवर का सेवा नहीं, उससे ज़्यादा कुत्ता बिल्ली का सेवा हो रहा है।
1: ये आपने अपने मन की बात कह दी लाल बहादुर जी, और उम्मीद करते हैं कि जो पशुपालन विभाग से जो डॉक्टर्स हैं और जो ये सुन रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि वो अपनी ओर से लोगों के भले के लिए कुछ ना कुछ आगे कदम बढ़ाएं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपको धन्यवाद। किसान साथियों, अभी आपने महावीर नगर भातुबस्ती के रहने वाले श्री लाल बहादुर यादव जी से की गई बातचीत सुनी, और आपने जाना कि कैसे पशुपालन कर वे अपना गुजर बसर करते हैं। और इसी बातचीत के बाद चलिए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में, और सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: किसान भाइयों, आइए अब खेत बचाओ अभियान के विषय में चर्चा करते हैं। किसान साथियों, अंडमान और निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग के ATME या आत्मा एवं ICAR कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान के सहयोग से 1 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय व्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य है किसानों को वैज्ञानिक एवं जलवायु संवेदनशील खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि उत्पादकता बढ़े और प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य प्रबंधन, हरित खाद, जैविक एवं जैव उत्पाद, एकीकृत पोषण प्रबंधन, इन सभी विषयों पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती और सतत कृषि पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है ये अभियान। खेत बचाओ अभियान का लक्ष्य है किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना, दीर्घकालीन उत्पादकता सुनिश्चित करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। किसान साथियों, अभी आपने चर्चा सुनी। चर्चा का विषय था खेत बचाओ अभियान।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परम्परा है परम्परागत खेती।
0: किसान साथियों, महिलाओं के लिए योग बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि महिलाओं के अलग अलग अवस्था के

ये अलग अलग योगासन होते हैं और आज हम बात करेंगे महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से योग किए जा सकते हैं। तो लीजिए सुनिए योगा से जुड़ी जानकारी। साथियों, गर्भावस्था के दौरान योग करना माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। योग से तनाव कम होता है, शरीर में लचीलापन बढ़ता है और प्रसव के दौरान दर्द कम हो सकता है। चलिए अब आपको योग के फायदे गिना दें। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य। योग शरीर को मजबूत बनाता है, खासकर गर्भावस्था के दौरान पीठ दर्द और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है। योग तनाव और चिंता को कम करता है, जिससे गर्भावस्था के दौरान मानसिक रूप से शांत रहने में मदद मिलती है। अगला फायदा है प्रसव के लिए तैयारी। योग प्रसव के दौरान दर्द को कम करने और बच्चे के जन्म को आसान बनाने में मदद करता है। चलिए अब आपको बता दें कि गर्भावस्था के दौरान कौन से योगासन करना जरूरी होता है। पहला है सुखासन, जो कि आराम से बैठने का आसन है। अगला है बालासन, जिसमें बच्चे की मुद्रा, जो गर्भावस्था के दौरान पीठ दर्द के लिए अच्छी होती है। वृक्षासन, जो कि एक पेड़ की मुद्रा है, जो शरीर में संतुलन और ताकत लाने में मदद करती है। बद्धकोणासन, जो एक तितली की मुद्रा है, जो कि श्रोणि क्षेत्र को लचीला बनाती है। गर्भावस्था के दौरान योग करते समय कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, जिनमें है गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में जटिल योगासन करने से बचें, प्रेगनेंसी के 14वें हफ्ते के आसपास योग करना शुरू करें, अति ठंडी या गर्म योग से बचें, अपनी शारीरिक सीमाओं को जानें और डॉक्टर की सलाह लें। किसान साथियों, अभी आपने योग से जुड़ी जानकारी सुनी। साथियों, अब वक्त हो चला है पूछे गए प्रश्न के उत्तर बताने का। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा था, गंधी कीट किस पौधे को प्रभावित करता है, और हमने आपको 3 विकल्प भी दिए थे। पहला था बैंगन, दूसरा पपीता और तीसरा धान। और किसान साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है धान। जी हाँ, गंधी कीट धान के पौधे को प्रभावित करता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों ने अपने उत्तर को जांच लिया होगा और सुधार भी लिया होगा। किसान साथियों, वैसे जो भी कार्य शुरू होते हैं उनका अंत होना भी निश्चित होता है, और हम भी अपने कार्यक्रम के अंत की ओर आ चुके हैं। और अब हम आपसे लेना चाहेंगे अनुमति इस वादे के साथ कि अगले किसान वाणी कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, और अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने। आज इस अंक में सुनिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विषय पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं नेचुरोपैथी अधिकारी डॉक्टर नंदिनी के साथ बातचीत का पुनः प्रसारण। इनके साथ बातचीत कर रही हैं हमारी संवाददाता संगीता देवनाथ।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने में सहायता करता है। नियमित योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। आज के व्यस्त जीवन में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आयुष अस्पताल के योग और प्राकृतिक चिकित्सा की अधिकारी

0: डॉक्टर नंदिनी को आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम आज के इस आमने सामने कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर नंदिनी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: हम केवल हमेशा से योग को शारीरिक रूप से ही देखते हैं, तो ये साल या हर साल हम योग को मनाने का मेन मुद्दा ये होता है, क्योंकि हमेशा से हमें योग को लेकर एक अवेयरनेस पैदा करना होता है। तो योग को हमेशा से हम लोग एक दिन तक सीमित ना रखते हुए प्रतिदिन हम योग को अपने जीवन शैली में अपनाएं, इसी का मेन ऑब्जेक्टिव होते रखते हुए हम योग दिवस हर साल मनाते हैं 21 जून को।
0: अच्छा, तो 21 जून को जैसे हर वर्ष जो है हम ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो इस बार जो है इस योग दिवस को लेकर कुछ उल्टी गिनती की बात चल रही है, द काउंट डाउन स्टार्टेड लाइक दैट, सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं?
1: जैसे कि 100 डेज काउंट डाउन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने शुरू की है
0: जी।
1: तो जैसे कि 100 डे काउंट डाउन प्रोग्राम, एक एक दिन हम 100 डेज में जब तक 21 जून ना आ जाता है तो हम एक स्पेशल डे मूवमेंट मना के मनाते हैं। जैसे 100th डे, 75th डे, 50th डे, 25th डे, ये हमें कंसिस्टेंटली एक प्रैक्टिस को एक मोटिवेशन देता है। जैसे कि हमारे घर में कोई फंक्शन हो जाता है, शादी हो जाता है, तो वो सेलिब्रेशन के लिए प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स जो भी हम लोग प्लान करते हैं कि कुछ खरीदारी करना है, उसी तरह सिर्फ योगा डे तक ही सीमित ना रखते हुए पहले से हम अपने आप को तैयार करते हैं, अवेयर लेके आते हैं और बाकी को भी मोटिवेट करते हैं कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में मिलजुल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऐसे बहुत सारे अन्य प्रोग्राम करवाता है, फॉर एग्जांपल क्विज प्रोग्राम करवाते हैं, जैसे कि टाइटल अभी तक चूज नहीं करे हैं, इस साल का थीम नहीं आया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पूरे भारत के सभी लोगों से ये निमंत्रण किया है कि आप कोई टाइटल चूज करिए, तो आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं और अपना सजेशन भी दे सकते हैं। केवल यहाँ तक ही नहीं, हमारे दीपों में भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज अभी आने वाले दिन में हम लोग काउंटडाउन प्रोग्राम में करवाते आ रहे हैं और ये हमारे योग दिवस तक ही सीमित ना रहते हुए साल भर ये प्रोग्राम को हम करवाते जाएंगे
0: जी। तो आपका मतलब कहना ये है कि जैसे कोई भी कार्य को करने से पहले हम उसकी प्री तैयारी या हम शुरू कर देते हैं, चाहे वो घर का फंक्शन हो या कोई और पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी, ठीक वैसे ही योग दिवस मनाने के लिए जो है ये काउंटडाउन शुरू किया गया है। और क्या इस सिलसिले में आप लोगों ने जो अवेयरनेस फैलाने की बात कही है, जो 100 डेज का जो टारगेट आपने रखा है, तो इसमें क्या विद्यालय या कोई डिपार्टमेंट, क्या ये भी शामिल है, क्या उनको भी आप वहाँ जाकर भी आप योग के बारे में उनको अवेयर करते हैं?
1: जी हाँ, ऐसे भी थ्रू आउट द साल तो हम करते ही हैं, पर ये काउंटडाउन प्रोग्राम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो May 1 से ही शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोग खास करके बच्चों लोग के लिए स्पेशल समर वेकेशन कैंप, योगा कैंप रखा है। ये 1 May से लेके 31 May तक शुरू रहता है, जहाँ हम सभी बच्चों लोग को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, उनको बेसिक योगा से लेके एडवांस योगा प्रैक्टिस सिखाते भी हैं वेल ट्रेन्ड योगा इंस्ट्रक्टर साथ, और खास करके हम सभी डिपार्टमेंट के स्टाफ को TOT प्रोग्राम करवाते हैं। TOT का मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के स्टाफ्स को हम एंगेज करते हैं और उनको कॉमन योगा प्रोटोकॉल, जो मिनिस्ट्री ने एक ऐसा प्रोटोकॉल बनवाया है जो कोई भी मतलब मनुष्य या पब्लिक ईजिली कर सकता है, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम से लेके आसन प्राणायाम जैसे बेसिक टेक्निक्स है, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन सभी होता है, इसको हम मैंने भर उनको ट्रेन किया जाता है। तो ताकि केवल एक हेल्थ डिपार्टमेंट या स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ही वो सीमित न रहते हुए सारे सभी लोगों के साथ मिलजुल के ये योग दिवस को हम मना सके और उसका उत्साह ले सके।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा ये काम किया जा रहा है आयुष की ओर से। तो योगा डे की उल्टी गिनती के दौरान लोगों में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस जो है हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज काफ़ी अवेयर हैं लोग, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम पिछड़े हुए हैं, अब भी लोग उतने जागरूक नहीं हैं। क्या आयुष की ओर से इस सिलसिले में इस ओर कोई कार्य किया जा रहा है?
1: जी, जैसे कि मैंने काउंटडाउन प्रोग्राम के साथ बोला, जैसे कि हम पहले मैं शुरुआत करूंगी बच्चों लोग से, तो जब बच्चे लोग को हम स्पेशल क्लासेस समर क्लासेस में इन्वॉल्व करते हैं तो उनको अंदर में एक ऊर्जा पैदा होता है कि ऐसे क्लासेस करने से क्या लाभ हो सकता है, इससे हम क्या क्या सीखते हैं, बच्चे लोग को मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल हेल्थ के ऊपर में एक प्रेरणा मिलती है, तो पेरेंट्स भी उसके लेके अवेयर रहते हैं। फिर डिपार्टमेंटल वाइज जो हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं और बीच क्लीनिंग ड्राइव्स ऐसे काम करवाते हैं, ट्राइबल हेल्थ के लिए भी आयुष सिस्टम बहुत

0: काम कर रहा है। तो योगा सेशन फॉर ऑल ट्राइबल्स, जितने भी PVGTs मतलब ट्राइबल्स होते हैं, उनको हम लोग उनके प्लेस में, फॉर एग्जांपल तिरूर हो गया, जिरकाटांग हो गया, स्ट्रेट आइलैंड हो गया, इवन डुगोंग क्रिक हो गया, वैसे जगह में जाके खुद वहाँ पे हम लोग ट्राइबल हेल्थ कैंप फॉर योगा सेशन स्पेशली फॉर ट्राइबल पीपल के लिए करवाते हैं। साथ ही साथ में हम लोग फ्लैश मॉब करवाते हैं कि लोगों को, पब्लिक को इसके बारे में अवेयरनेस लो, फ्लैश मॉब इन द सेंस नुक्कड़ नाटक, ताकि
1: बिल्कुल
0: बेसिक लोग को भी पता चले कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं।
1: सकते
0: क्विज
1: हैं।
0: कंपटीशन करवाते हैं, बहुत टाइम में ऐसा होता है मैम हम लोग पोस्टुरल कंपटीशन करवाते हैं, लोगों को कभी कभी एक साथ अकेले में परफॉर्मेंस करने के लिए मुश्किल होता है तो हम लोग ग्रुप कॉम्पिटिशन करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्साइटमेंट प्रोग्राम्स ऑलरेडी हमने चॉकआउट किया है, अभी आने वाले दिनों में वो सारे एक्टिविटीज हम लोग डेली टेलीग्राम के थ्रू या रेडियो के थ्रू सबको मीडिया में पब्लिश भी करेंगे और लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और इस योग दिवस को और भी चमक लाए, यही हम आशा करते हैं।
1: तो आपकी जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम, जो आपने इतने सारे प्रोग्राम्स आपने चॉकआउट किया हुआ है, फुल प्री प्लान जो किया हुआ है, तो क्या इसमें हमारे विद्यालय भी शामिल होंगे उस ओर?
0: जी, जैसे कि हम विद्यालय की जब बात करते हैं तो मई एंड जून हमेशा से समर
1: रहता
0: वेकेशन
1: है।
0: रहता
1: जी
0: है,
1: जी
0: बट हमेशा से हमारा क्या उसमें सा रहता है कि जो बच्चे भी छुट्टियों में रहते हैं वो घर पे ना रहते हुए हमारे साथ मिलजुल के काम करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि समर कैंप हो गया, फिर उसके बाद कोई ट्रेनिंग्स अटेंड हो गए, हम लोग एडवांस आसन प्रैक्टिस सिखाते हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग रैलीज में ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ एक केवल भी नहीं मैम, जब भी बच्चे योग दिवस खत्म भी हो जाता है या स्कूल लेवल्स में भी रखते हैं तो योगा कॉम्पिटिशन जो ओलम्पियाड लेवल में होता है उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन स्कूल्स को भी अपने असम्बलीज में भी एक सिंपल योगा आसन प्रैक्टिस करवाना चाहिए, या जनरल PT क्लासेस जैसे होते हैं उसमें योगा को भी
1: रहता है।
0: इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि इसमें स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट योगा के साथ हमेशा से जुड़ा रहता सके और इंडिविजुअली हर लोग योग के बारे में जागरूक रहे और उसको प्रैक्टिस करे और अडॉप्ट कर सके।
1: बिल्कुल। तो मैडम आपसे जानना चाहते हैं कि योगा डे की जो उल्टी गिनती है, जो
0: जी
1: काउंटडाउन, जो आई थिंक 1 मई से ही आपका शुरू होगा,
0: जी
1: तो ये उल्टी
0: ऑलरेडी
1: गिनती
0: 100 डे प्रोग्राम्स
1: शुरू
0: शुरू
1: हो
0: हो चुके
1: चुका
0: हैं
1: है।
0: जी।
1: ओके, तो ये 100 डेज का जो प्रोग्राम है ये ऑल ओवर हमारे पूरे द्वीप समूह को आप कवर कर रहे हैं या पर्टिकुलर सम एरियाज?
0: नहीं, ऑल ओवर पूरे द्वीप समूह में कवर हो रहा है, जैसे कि 100 डे शुरूज हो गए तो हमने स्कूल्स में कवर करे थे, कॉलेजेस में कवर करे, डिपार्टमेंट में कवर करे, वर्क प्लेस में जैसे योगा ब्रेक करके एक सेशन होता है जिसको हम लोग वाइब ब्रेक करते हैं तो वर्क प्लेस में कवर किया है, किसी ने कोई कोई डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट्स या डिफेंस में कवर किया है, तो थ्रू आउट कैमल बे से लेके डिगलीपुर हर जगह में इसको एक एक जगह पे कवर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कवर किया जा रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो कहीं छूटा नहीं है जहाँ तक, और जहाँ छूट भी रहा है वो जब तक 21 जून आ जाए तब तक वो कवर हो भी जा रहा है।
1: बहुत अच्छा, ये शुरुआत है आपका ये जो है। तो डॉक्टर नंदिनी, आप बताइए कि ये जो योगा डे से पहले प्रतिदिन जो योग अभ्यास करने से मनुष्य को इससे क्या लाभ हो सकते हैं?
0: हमेशा से योग को फिजिकल लेवल, शारीरिक लेवल से ही लोग जोड़ते हैं, जैसे कि मैं किसी को अगर सजेस्ट करती हूँ आप योगा कीजिए आपको बहुत अच्छा होगा तो लोग बोलते हैं मैं नहीं बेंड कर पाती हूँ, मेरा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है।
1: जी
0: तो पतंजलि योग सूत्र में ऐसा सिंपली कहा है, जो हमारे पतंजलि गुरु होते हैं हम योग के बोलते हैं, तो उनका अनुसार योग का सबसे पहला स्टेप होता है यम और नियम, अष्टांग योग के अनुसार।
1: अष्टांग जी
0: यम नियम का मतलब होता है कि आप बेसिक डिसिप्लिन, जैसे कि एक टीचर होते हुए हम बताते हैं बच्चे बेटा चोरी नहीं करना, झूठा नहीं बोलना, अपना
1: बिल्कुल।
0: वातावरण साफ रखना, ये बेसिक डिसिप्लिन आपके पेरेंट्स भी सिखाते हैं, आपके टीचर भी सिखाते हैं, वो डिसिप्लिन ही फर्स्ट स्टेप है मैम। तो
1: बिल्कुल।
0: जैसे वो स्टेप में आप आते हैं, मतलब तो मैट में आने का मतलब ये नहीं है कि जब तक आपको सेल्फ डिसिप्लिन आप क्रिएट नहीं कर पाते तब तक आप मैट
1: नहीं
0: में
1: कर
0: नहीं
1: पाएंगे,
0: आते।
1: बिल्कुल।
0: तो योग का मतलब ये नहीं कि आप एडवांस आसन कर ले, पूरे सिर से पैर को टच कर ले या सिर आप पैर को पूरा ऊपर उठाए, दिस इज नॉट अवर मेन मोटिव। हमारा मेन मकसद ये है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहे, सेल्फ डिसिप्लिन रहे और कंसिस्टेंट रहे। हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जब तक सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंटली नहीं रहते तब आप कुछ भी चीज को हासिल नहीं कर
1: कर
0: पाते।
1: पाएंगे।
0: तो हमारा मुद्दा ये होता है कि आप ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना ही हमारा एम होता है, वो फिजिकल लेवल में हो, इमोशनल कंट्रोल हो। बहुत सारे लोग छोटे छोटे चीज में बहुत रो देते हैं, गुस्सा आ जाता है, मेंटल

0: क्लैरिटी नहीं रहता है, स्ट्रेस ओरिएंटेड रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, इस तरह हर चीज में आप ओवरऑल एक एक बिल्डअप करके उनको बनाए, वही हमारा मकसद रहता है। तो ये केवल फिजिकल लेवल में हम फोकस नहीं करते हैं, तो द मैट से लेके मेंटल इमोशनल लेवल एवरीथिंग वी हैव टू कवर अप। तो यही है कि आप ओवरऑल पर्सनालिटी हमें बिल्डअप करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर नंदिनी, विषय से हटकर एक प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे कि आजकल के जो बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा, जैसे हम देखते हैं हर घरों में पढ़ाई से ज्यादा इनके हाथ में मोबाइल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, और कुछ हद तक कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन जरूर है पढ़ाई में, तो क्या इसमें योग के माध्यम से क्या हम बच्चों को वापस ला सकते हैं, मोबाइल उनसे छुड़वा सकते हैं, ऐसे कुछ फायदा हो सकता है क्या मेडिटेशन के जरिए या कुछ?
0: जरूर मैम, देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ये एक स्टेप प्रोसेस है, आप मेडिटेशन हो या आसन हो प्राणायाम हो, एक स्टेप प्रोसेस है। पहला बात तो हमारे बच्चे के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, हम पैक रखते हैं, पर बाकी टाइम में जब भी इनके पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि पेरेंट्स उनके बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, तो जब पेरेंट्स फ्री रहते हैं या इन्वॉल्व रहते हैं, उनको कुछ काम करना रहता है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा देर के लिए फोन दे दे, तो बच्चे इंगेज हो जाते हैं। पर जब बच्चे को हम रियली कुछ कामों में एंगेज करें तो उनको एक मेंटल क्लैरिटी होता है, इसीलिए यहाँ पे योग का अभ्यास बहुत जरूरी होता है। कैसे कि मैम, आप योग अगर नहीं करना चाहते, आपको कोई आउटडोर गेम्स में फिजिकल एक्टिविटी, बैडमिंटन, स्विमिंग, किसी में इच्छा है, तो आप घर से निकलते हैं, उनको क्लासेस छोड़ते हैं या आप क्लास खुद जा रहे हैं, तो फिर आप पे हमें एंगेज हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ असाइनमेंट होता है, आपको दिमाग में कुछ होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा फोन को डिस्ट्रैक्टली बाहर जाके उस काम में इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि लोग सिर्फ स्कूल जाते हैं वापस आते हैं, इतने फिजिकल एक्टिविटीज नॉट एनफ, आप बाहर की फिजिकल एक्टिविटी को भी इन्वॉल्व करके दीजिए। अभी हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली, इन सेंस आपको कोई सिबलिंग्स है ही नहीं, आप सिंगल चाइल्ड है, ऐसे सिचुएशंस में वो बच्चा चाहता है कि किसी के साथ खेले, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे रुकावट है कि कौन है मेरे साथ खेलने वाले, नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन में सभी पेरेंट्स को ये बोलूंगी, एक आप बच्चा बन के उसके साथ खेलिए, पर अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो बच्चे को कोई क्लासेस में, फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस में जरूर डालिए, ताकि वो थकेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे के पास बहुत एनर्जी है, वो कुछ करना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, इसीलिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, क्या कर नहीं पा रहे, तो उनको लगता है फोन इज अ वेरी हैप्पीएस्ट प्लेस, या मतलब कंफर्टेबल प्लेस, एक जगह में बैठे वो चलाते रहे वो अच्छा लगता है, और बुरी आदत बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, दैट इज अ रीजन फोन इतना जल्दी अट्रैक्ट करता
1: है। सो डॉक्टर नंदिनी, योग दिवस को लेकर हमने कई सारी बातें की, और इसकी जो उल्टी गिनती जो शुरू हो चुकी है उसके लिए आप कई सारे काम भी कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट की ओर से कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी, कि क्योंकि 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस मनाने हम जा रहे हैं। तो चलते चलते आपसे एक आखिरी प्रश्न हम करना चाहेंगे कि आज हमारे इस द्वीपवासियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: मैं अपने द्वीपवासी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप योग को एक दिन तक सीमित ना रखते हुए योग को अपने जीवन शैली बनाइए और रोज़ाना अपना ज़िंदगी में अपनाइए, योग और अपने जीवन को एक महत्व दीजिए, और प्रतिदिन योग करते हुए अपने हेल्थ को और अपने अपने आप को भी खुश रखिए और हमेशा से स्वस्थ रखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सो आपसे बातचीत करके हमने काफ़ी सारी जानकारियां हासिल की, आई होप कि हमारे द्वीपवासी इससे ज़रूर, उनको बेनिफिट ज़रूर मिला होगा। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि विकसित भारत केवल एक सपना नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक ऐसा भारत जहां शिक्षा सशक्त हो, स्वास्थ्य सुलभ हो, इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहते हैं, और डॉक्टर नंदिनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अगले अंक में एक और नए मेहमान के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: आमने सामने के इस कार्यक्रम में अभी आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विषय पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं नेचुरोपैथी अधिकारी डॉक्टर नंदिनी के साथ बातचीत का पुनः प्रसारण सुन रहे थे। इनके साथ बातचीत कर रही थी हमारी संवाददाता संगीता देवनाथ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की भेंट थी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:45 हुए हैं।

0: अब सुनिए लेखक राजकुमार दाग और निर्देशक दीनानाथ निर्देशित झलकी हमारी भी सुनो।
1: हाजी मैंने कहा जी सुनते हो?
2: ना दिन में सोने देती हूँ ना रात को, क्या बात है इस बार?
1: हाजी मेरा ख्याल है घर में चोर घुसा है, खुसर पुसर की आवाज़ें आ रही
2: है। अरे घर में चोर घुसा है तो पड़ोस में से किसी मर्द को बुला लो।
1: पड़ोस से मर्द को बुला? हाजी मैंने कहा आप ही तो मर्द हैं।
2: है? अरे खूब याद है, ल, ल, ल, ल, लाना तो मेरी पिस्तौल।
3: खबरदार, हैंड्स अप। क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या
2: क्या क्या क्या क्या
3: क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या
2: क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या
3: क्या क्या क्या क्या क्या
2: क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या
3: क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या
2: पप्पू बेटा उठो, देखो बेटा कौन आया है।
3: चलो लड़के लड़के तुम भी इनके साथ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुना, अलमारी के पीछे कौन सोया हुआ?
2: वो हमारा नौकर है।
3: उसे भी जगा दो, जगा
2: जी।
3: इसे भी जगा दो,
2: जी जी जी। चल ले ले ले लीजिए। रामलखन, अरे रामलखन उठो भाई, उठकर हमारे साथ लाइन में बैठ जाओ। जी हजूर, मैं तो अपनी बारी की बात देख रहा था हजूर। एक है
4: एक गजल के चंद शेर अर्ज
5: है। तुम्हारे इश्क में, तुम्हारे इश्क में अपना सनम ये हाल हुआ है।
6: तुम्हारे इश्क में अपना सनम ये हाल हुआ है।
5: अरे तुम्हारे इश्क में अपना सनम ये हाल हुआ। और तुम्हारे घर में तो नानी का इंतकाल हुआ। क्या तुम्हारे घर में तो नानी का इंतकाल हुआ। और अर्ज किया हुजूर, तुम्हारी शोख नजर का कमाल क्या कहिए, तुम्हारी शोख नजर का कमाल क्या कहिए। अरे देखते देखते घर मेरा अस्पताल हुआ।
3: आदम से
5: और आगे अर्ज किया है, मैं तेरे पास से गुजरा, मैं तेरे पास से गुजरा तो हो गया सेप्टिक।
6: मैं तेरे पास से गुजरा तो हो गया सेप्टिक,
5: मैं तेरे पास से गुजरा तो हो गया सेप्टिक। अरे पड़े हुए बिस्तर पे मुझे पूरा डेढ़ साल हुआ। अर्ज किया है,
2: आप भी तो दांत दीजिए।
6: अति सुंदर,
5: मुझे गरीब जो देखा, मुझे
6: गरीब जो देखा,
5: मुझे गरीब जो देखा तो अलग जा बैठे,
3: अलग जा बैठे।
5: अरे वो उसी के हो गए जिसकी गिरह में माल हुआ। यही है जी में, यही है जी में के दो चार गालियां दे दूं।
3: क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं।
5: यही है जी में के दो चार गालियां दे दूं के कलाम दिल का इसी शय से माला माल हुआ। कलाम दिल का इसी शय से माला माल हुआ।
6: हाँ तो अभी आपने जनाबे दिल मुरादाबादी से उनका कलाम सुना, अब मैं जनाबे
2: मगर ये सब
6: मैं आपको बताता हूँ, हम तीनों कोई चोर या डाकू नहीं
2: जी,
6: बल्कि मैं शायर
2: जी,
6: खालिश शायर
2: जी। हाँ। शायर
4: जी, जी हाँ। और इस वक्त जो हमने आपके घर में महफिल मुशायरा मुनक्कद कर रखी है, उसकी वजह यह है कि हमें अपना कलाम सुनाने के लिए कहीं ऑडियंस ही नहीं मिली।
2: ऑडियंस?
4: जी हाँ, कलाम सुनने वाले समझ गए ना आप। दरअसल आज बाग झंडे अली खां में एक मुशायरा होने वाला था, हमें इन्विटेशन ना मिलने पर भी हम वहाँ गए, मगर वहाँ हाजिरी इस कदर दर्दनाक थी कि शायर ज्यादा और सुनने वाले कम, चुनाचे हमें अपनी बारी की बिल्कुल उम्मीद न रही और हम कहीं और ऑडियंस की तलाश में निकल पड़े। तलाश करते रहे और मारे मारे फिरते रहे, मगर कोई हमें सुनने को तैयार नहीं हुआ। आखिर हमें आपके घर नकब लगानी पड़ी, मेरा मतलब है आपके घर का सहारा लेना पड़ा।
2: समझा, काफी दर्दनाक सिचुएशन है।
6: जी हाँ, तो फिर इजाजत है ना?
2: इजाजत
6: तो

0: अब जनाबे दाग रशीदपुरी अपना कलाम सुनाइए।
1: आइए
0: साहब,
2: एक नज्म पेश करूंगा।
1: इरशाद इरशाद,
2: उनवान है किराया नामा।
1: किराया नामा, बहुत खूब साहब,
2: बशर अमरूद खाकर।
1: बशर अमरूद खाकर,
2: बशर अमरूद खाकर जिस तरह बीमार होता
1: है। बशर अमरूद खाकर जिस तरह बीमार होता है, बहुत खूब
2: साहब, बशर अमरूद खाकर जिस तरह बीमार होता है, किराए का मकान लेकर जलीलो खार होता है।
1: किराए का मकान लेकर जलीलो खार होता है, बहुत खूब साहब, क्या बात पैदा की है। देखिए श्रीमान जी, आप खामोश की बैठे, दाल दीजिए।
3: अति सुंदर,
1: ये वही ना बात। इरशाद
2: इरशाद, अर्ज किया है किराया पेश की हो।
1: किराया पेश की हो, किराया पेश की हो,
2: किराया पेश की हो, ये तो उनकी शर्त अव्वल है। पढ़ाऊ उनके बच्चों को, ये भी इकरार होता है।
1: पढ़ाऊ उनके बच्चों को, ये भी इकरार होता है।
4: क्या बात,
1: क्या जुल्म है साहब।
2: किराएदार घर हो डॉक्टर,
4: किराएदार घर हो
2: डॉक्टर, तो शर्त ये भी है।
1: क्या
2: दवाई मुफ्त दे मालिक अगर बीमार होता है।
1: बहुत
4: मजा फरमाया साहब।
2: मेरी मुर्गी अगर,
1: मेरी मुर्गी अगर
2: गलती से अंडा उनके घर दे दे,
5: वाह वाह, मिसरा है कि आमलेट,
4: तो मेरी मुर्गी
2: अगर गलती से अंडा उनके घर दे दे, तो उस अंडे का भी मालिक मकान हकदार होता है।
1: क्या सितम गरीबी है, क्या नक्शा बयान किया।
2: मगर बकरी,
1: मगर बकरी
2: अगर उनकी मेरे कपड़े ही चढ़ जाए,
4: मगर बकरी अगर उनकी मेरे कपड़े ही चढ़ जाए,
2: कपड़े ही चढ़ जाए,
1: चढ़ जाए,
2: तो ये एहसान है उनका जो सौ सौ बार होता है।
1: क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब, बहुत खूब साहब,
4: बहुत।
2: और कनेक्शन बिजली पानी का,
1: कनेक्शन बिजली पानी का
2: अक्सर काट देते हैं।
4: कनेक्शन
1: बिजली पानी का अक्सर काट देते हैं।
2: किससे जज्बाए जोरों से तुम सरचार होता है,
1: किससे जज्बाए जोरों से तुम
2: सरचार होता है। मैं उनसे पूछता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ ये मेरी हक तल्फियाँ क्यों है,
4: मैं उनसे पूछता हूँ ये मेरी हक तल्फियाँ क्यों है।
2: वो कहते हैं इसी का नाम कारोबार
1: होता है। कारोबार है, क्या कारोबार है, क्या हक तल्फी है।
2: कमारों के लिए,
1: कमारों के लिए
2: कमारों के लिए,
1: कमारों के लिए
2: बिल्डिंग में गुंजाइश नहीं साहब।
3: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: क्या साहब,
2: अगर शादी करा लाओ तो बेड़ा पार होता है।
1: बहुत खूब साहब, अगर शादी करा लाओ तो बेड़ा पार।
2: हजूर मख्ता अर्ज है,
1: इरशाद
2: तखल्लुस दाग है,
1: मालूम है,
2: आशिकों के दिल में रहता हूँ,
1: तखल्लुस दाग है,
2: आशिकों के दिल में रहता हूँ, किराए का मकान तो आजकल बेकार होता है।
1: बहुत खूब साहब, बहुत बहुत। अच्छा, अब मैं नाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से हमें फैजयाब फरमाएं। नाज साहब बनारसी।
0: तो जनाब, अपनी मुफलिसी पर कुछ शेर अर्ज करूंगा।
1: जाहिर है,
0: मुझसे मत पूछ,
1: मुझसे मत पूछ,
0: मुझसे मत पूछ मेरी जेब में क्या रखा है।
1: मुझसे मत पूछ मेरी जेब में
0: क्या, और मुझसे मत पूछ मेरी और जेब में क्या रखा है, खाली बटुआ है जो सीने से लगा
3: है। अति सुंदर,
0: और खाली बटुआ है जो सीने से लगा रखा है, और देखने वाले, और देखने वाले मेरी बाहरी सूरत पे न जा, देखने वाले मेरी और बाहरी सूरत पे न जा, मैंने इस सूट में कड़की को छुपा
1: रखा है,
0: मैंने इस सूट में कड़की को छुपा रखा है, और रोज फरमाइशे, रोज फरमाइशे बच्चों पे ही मौकूफ नहीं,
1: रोज फरमाइशे
0: और बच्चों पे ही मौकूफ नहीं, उनकी अम्मा ने भी दीवाना बना रखा है, उनकी अम्मा ने भी दीवाना बना रखा है।
1: क्या अम्मा है,
0: शेर मुलाहजा फरमाइए।
1: इरशाद,
0: फूल सी जिंदगी,
1: फूल सी जिंदगी,
0: और फूल सी जिंदगी और उसमें मीठा से गुरबत, फूल सी जिंदगी और उसमें मीठा से गुरबत, तूने भगवान मेरा गुलकंद बना रखा है, और तूने भगवान मेरा और गुलकंद बना रखा है। आखिर में मक्ता अर्ज है, और ना

0: हर शेर बबर पर अपने, नाज को नाज है हर शेर बबर पर अपने, काफिया तंग सही फिर भी मिला रखा है, काफिया तंग सही फिर भी मिला रखा है।
1: अति सुंदर।
0: मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही मुतमईन।
2: बल्कि हम सब बहुत हल्के फुल्के महसूस कर रहे हैं।
0: बेशक,
3: जैसे सर से एक बहुत बड़ा
0: बोझ बोझ उतर गया। अच्छा,
4: तो अब हम इजाजत चाहते हैं। समझदार जो एक कदम पीछे हटाया। तीनों जहाँ हो वहीं रुक जाओ,
3: मगर
4: बल्कि जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ। पप्पू तुम फौरन खिड़की के पास चले जाओ, राम लखन तुम दरवाजे के पास। इनमें से कोई भी भागने की कोशिश करे तो फौरन पुलिस पुलिस का चोर बचा देना, और इन सबको पकड़ने की कोशिश करना।
3: मगर हम चोर नहीं है, हम तो फकत शायर हैं।
4: जानता हूँ, और इसीलिए आपको लोगों को रोक रहा हूँ।
3: मगर क्यों जनाब?
5: इसलिए क्या आपको मेरी कविता सुननी
3: जी?
5: है
3: जी?
1: क्या?
5: जी हाँ, मैं भी कवि हूँ। तो प्रस्तुत है
3: इर्शाद,
5: एक छोटी सी कविता के केवल 360 शेर। मैं सजनी तेरी और बनूं, मैं सजनी तेरी और बनूं, तू कह दे भैया परे परे। सजनी तेरी और बनूं,
6: हम तो मारे गए खड़े खड़े।
4: राम लखन, जाने ना पाए, रोको, पकड़ो पकड़ो।
5: हजूर ये तो भागी गए।
4: भाग गए कुछ दिल कहीं गए।
5: जाने दीजिए हजूर, इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं। कोई शायर दूसरे शायर की कविता सुनी नहीं सकी। ये तो फिर शायर थे हजूर, अगर सचमुच चोर है थे तो भी आपकी कविता सुनकर भागी जाते।
4: भागो मत।
5: कैसे नहीं भगू हजूर, ये तो मेरा ही दम है जो दिन रात आपकी कविताएं सुनता रहूं। पर मैं शिकायत किससे करूं, आपने जाए नौकरी के लिए तो मोए रखो।
4: तो सुन,
5: मैं सजनी तेरी और बड़ू, तू कह दे भैया परे परे, तू कह दे भैया परे
7: परे। अभी आप लेखक राजकुमार दाग और निर्देशक दीनानाथ निर्देशित झलकी हमारी भी सुनो सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 14वीं कड़ी।

7:30 पर हमारे युवाओं के लिए कार्यक्रम युवाणी। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम योग ही जीवन है। रात 8:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। रोजगार समाचार और गौरवगान रात 8:30 पर। श्रोताओं, इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:00 आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत विवेक करमह से ठुमरी व दादरा आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:05 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
4: नमस्कार, भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
3: जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 28 जून 2026।
5: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज द्वीप समूह के तीनों जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री विजयपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने संबोधन में कहा, अंडमान निकोबार को देश के दूरस्थ हिस्से के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले वर्षों में कनेक्टिविटी और विकास कार्यों के माध्यम से इस सोच में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल के एकीकरण से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँच रहा है और शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनी है। श्री रिजिजू ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है।
1: इतना बड़ा राष्ट्र, इतना पुराना हमारा इतिहास, हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री हजारों साल पुराना, ये जो 200-300 साल पुराने देश बने हैं वो अभी राष्ट्र बन गए और भारत जो है गरीब राष्ट्र बन करके नहीं है, ये हम मंजूर नहीं हो सकते हैं। सीधा सीधी एक लक्ष्य खींच दिया कि 2047 जब आजादी का 100 साल पूरा होगा तो भारत को विकसित होना ही है, और जब टारगेट सेट करने के बाद हम लोगों ने पूरा ताकत झोंक दिया, और ताकत झोंकने के साथ साथ हमने ये कहा ये सिर्फ सरकार अकेला नहीं कर सकता है, इसमें पूरा भारत का हर एक नागरिक को जुड़ना होगा। काम तो सबको मिलकर करना है, सरकार ने तो जिम्मेदारी दिया है, जनता सेवा के लिए दायित्व दिया है, तो हम मिलते ही काम करना है।
0: उन्होंने अंडमान निकोबार में चल रही विकास परियोजनाओं तथा नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी सराहना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि पार्टी ने संगठन के विस्तार और जनसेवा के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। अंडमान निकोबार में बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि द्वीप समूह में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, बंदरगाह और अन्य विकास कार्यों से नए अवसर सृजित हुए हैं। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों, महिला प्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों तथा विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। यह विषय उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानित जीवन जीने के लिए योग का आजीवन अभ्यास करने के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सम्मानीय योग अभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, राष्ट्रीय लोक अदालत और खेत बचाओ अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज जिला न्यायालय भवन पोर्टब्लेयर तथा उपमंडलीय न्यायालय परिसर मायाबंदर, डिगलीपुर एवं कैम्बलबे में वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में बैंक वसूली, BSNL, NI एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम तथा आपराधिक मामलों सहित बड़ी संख्या में प्री लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। पोर्टब्लेयर, मायाबंदर और डिगलीपुर में बैंक वसूली के अनेक मामलों का समझौते के माध्यम से समाधान हुआ। इसके अलावा आपराधिक मामलों का निपटारा कर जुर्माना भी वसूला गया। कार्यक्रम के संचालन के लिए पोर्टब्लेयर में 3 तथा मायाबंदर और डिगलीपुर में एक एक पीठ का गठन किया गया। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कल कन्यापुरम ग्राम पंचायत कार्यालय में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य मृदा एवं जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन तथा टिकाऊ कृषि उत्पादन के प्रति किसानों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में डॉ. एम. मुर्गानंदम ने मृदा एवं जल संरक्षण उपायों, वर्षा जल संचयन तथा एकीकृत कृषि प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं डॉ. वाई. रामाकृष्णा ने जैव उर्वरकों एवं पारंपरिक कीट प्रबंधन तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। किसानों को वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरकों तथा वैज्ञानिक खेती के माध्यम से

0: उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित किया गया। संवाद सत्र में किसानों ने फसल एवं पशुपालन से जुड़ी समस्याएं रखी, जिन पर विशेषज्ञों ने तकनीकी सुझाव दिए। कार्यक्रम में लगभग 40 किसानों ने भाग लिया। उधर कृषि विज्ञान केंद्र निम्बुडेरा ने खेत बचाओ अभियान के तहत 17 से 19 जून तक रंगत ब्लॉक के पर्णशाला, जनकपुर एवं सीतापुर गांवों में टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 57 किसानों ने भाग लिया। इसी प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र ननकौड़ी के मुनाका गांव और कैम्बलबे में भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 30 किसानों ने भाग लिया। दक्षिण अंडमान कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा नारियल में मूल्य संवर्धन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हो गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह को कच्चे नारियल से उच्च मूल्य वाले उत्पाद तैयार करने की तकनीकी जानकारी प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जयसुंदर ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए उन्हें आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों को अपनाने तथा इस कौशल का उपयोग कर सफल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया। वहीं डॉक्टर वाई रामाकृष्णा ने द्वीपों के आर्थिक विकास में स्थानीय स्तर पर वर्जिन कोकोनट ऑयल इकाइयों की स्थापना के महत्व पर प्रकाश डाला। समाज कल्याण निदेशालय एवं केवीके के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में प्राप्त कौशल का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनने तथा स्थानीय द्वीपीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का आह्वान किया। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संपर्क से समाधान प्रशासन गांव की ओर आउटरीच कार्यक्रम के तहत कल रामनगर ग्राम पंचायत हॉल में कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिगलीपुर के सहायक आयुक्त, तहसीलदार और राजस्व अधिकारी मौजूद थे। इसका उद्देश्य प्रशासन को सीधे गांवों तक पहुंचाना, लोगों की शिकायतें सुनना और उनका जल्द समाधान सुनिश्चित करना था। इस दौरान नामांतरण, उप विभाजन जैसे मुद्दों पर निपटारा और ग्रामीणों तथा पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों द्वारा उठाई गई शिकायतों को सुना गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कल डिगलीपुर में एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ विवेकानंद स्टेडियम डिगलीपुर से हुआ, जो रामकृष्ण ग्राम होते हुए हेलीपैड ग्राउंड विद्यासागर पल्ली तक पहुंची। रैली को डिगलीपुर के सहायक आयुक्त संतोष प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर लगभग 60 बाइक सवारों ने भाग लिया, जिनमें अंडमान एवं निकोबार पुलिस, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, स्थानीय प्रशासन तथा सुभाष ग्राम एवं रामकृष्ण ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस जागरूकता रैली का उद्देश्य आम जन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना तथा योग के माध्यम से स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व का संदेश देना था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज द्वीप समूह के 3 जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। मौसम की जानकारी। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

एमवी हडबे 22 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा और डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा 23 तारीख को सवेरे 7 बजे। एमवी सेंटिनल कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा तथा कल ही रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कालीघाट श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार जाएगा 28 तारीख को सवेरे 7 बजे एवं कार्निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम आएगा 29 तारीख को शाम 4 बजे। एमवी सेंटिनल 25 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तेरेसा कचाल और ननकौरी होते हुए कैम्बल बे के लिए चलेगा तथा कैम्बल बे से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम आएगा 28 तारीख को रात 8:30 पर। एमवी कालीघाट ननकौरी होते हुए कैम्बल बे के लिए श्री विजयपुरम से

4 बजे। एमवी सेंटिनल 25 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान, कार्निकोबार, चौरा, तेरेसा, कचाल और ननकौरी होते हुए कैम्बलबे के लिए चलेगा तथा कैम्बलबे से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम आएगा 28 तारीख को रात 8:30 पर। एमवी कालीघाट ननकौरी होते हुए कैम्बलबे के लिए श्री विजयपुरम से 23 तारीख को सवेरे 9 बजे छूटेगा और कैम्बलबे से ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम आएगा 25 तारीख को सवेरे 8 बजे। एमवी रानीचंगा कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाएगा तथा रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा कल ही दोपहर 12 बजे। एमवी रानी लक्ष्मी कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से लौटेगा कल ही सवेरे 8:30 पर। एमवी बाराटांग श्री विजयपुरम से स्वराजदीप जाएगा कल सवेरे 6:15 पर तथा कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप के लिए चलेगा तथा स्वराजदीप से श्री विजयपुरम लौटेगा कल ही दोपहर 2:30 पर। एमवी जॉली बॉय स्वराजदीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा दोपहर 2 बजे स्वराजदीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा एवं शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा कल ही दोपहर बाद 3:30 पर। एमवी हटबे कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा तथा शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम आएगा कल ही शाम 4:30 पर। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे और गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती हैं। 112-0312-110, 0319-2233-077 और 0319-2232-400 सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 14वीं कड़ी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विथ मी योर आरजे चेतन। आज हम द ग्रेट माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप शायद कुछ पक्षी या पंछी के बारे में सोच रहे होंगे। जी नहीं दोस्तों, मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूँ। सीमाओं के पार प्रतिदिन आने जाने वाले लोग के प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कुछ श्रेणियों के लिए यानी शरणार्थी, आर्थिक प्रवासी के लिए गतिशीलता को और अधिक कठिन बनाया जा रहा है। वैश्विक प्रवास के नए पैटर्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन वैश्वीकरण से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। एक और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को बढ़ावा देती है, जिसमें विकास, जनसंख्या और लोकतंत्र के इम्बैलेंसेस शामिल है। वैश्विक नौकरियों का संकट, वैश्विक श्रम बाजारों का विभाजन, संचार और परिवहन में क्रांतियां और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक नेटवर्क। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन स्वयं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जन्म देता है, जिसमें धन और वस्तु का वैश्विक स्थानांतरण, वैश्विक शहरों का उदय तथा बढ़ती सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता शामिल है। हालांकि व्यापार और पूंजी की तुलना में श्रम की वैश्विक आवाजाही प्रतिबंधित बिना हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन उन मुद्दों के मूल में है जो इनके लिए जरूरी है, जिसमें राष्ट्रीय पहचान,

आर्थिक प्रतिस्पर्धता और सुरक्षा शामिल है। इसीलिए विरोधाभास ये है कि जबकि अधिकांश औद्योगिक देशों के श्रम बाजार की कमी को पूरा करने और जनसंख्या के रुझाने को संबोधित करने के लिए अधिक प्रवासियों की आवश्यकता होती है, फिर भी अधिकांश राजनीतिक और लोक लुभावन दबावों के जवाब में प्रवासन को प्रतिबंधित कर रहे हैं। हालांकि व्यापार और पूंजी की तुलना में श्रम की वैश्विक आवाजाही प्रतिबंधित बनी हुई है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को वैश्वीकरण की कोयला खदान में एक कैनरी बर्ड माना जा सकता है, या तो ये तब फलेगा फूलेगा जब वैश्वीकरण की ताकतें राष्ट्रवाद पर काबू पा लेंगी, या इसकी कमी इस बात का संकेत हो सकता है कि वैश्वीकरण चरम पर पहुंच चुकी है और पीछे हट रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2015 में 244 मिलियन लोग एक वर्ष से अधिक समय तक अपने देश से बाहर रहे, और निश्चित रूप से वे लोग जो अपने देश के अंदर ही बाहर जाते हैं। इस कुल में लगभग 20 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं। एक तरफ अपने देश में मजबूर लोगों की ऐतिहासिक उच्च संख्या, दूसरी तरफ प्रवास की कुल संख्या का अभी भी अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा। प्रवास और उसके प्रभाव के बारे में अब जानेंगे मेरे दोस्तों आज के लम्हे कार्यक्रम में चेतन के साथ। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। प्रवासन एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग रहने और काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नौकरी, आश्रय या किसी अन्य कारण से लोगों का अपने घर से दूसरे शहर, राज्य या देश में जाना प्रवास कहलाता है। भारत में पिछले कुछ वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास बढ़ा है। प्रवास के कारण आजकल कई लोग बेहतर जीवन जीने लगे हैं। रोजगार के अवसर सबसे आम कारण है जिसके कारण लोग पलायन करते हैं। इसके अलावा अवसरों की कमी, बेहतर शिक्षा, बांधों का निर्माण, वैश्वीकरण, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखा, फैमन और ड्रॉट, और कभी कभी फसल की विफलता ने ग्रामीणों को शहर की ओर माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया। जो लोग काम या आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। ज्यादातर बार प्रवासी लोग कुशल या शिक्षित नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें आमतौर पर मजदूर यानी श्रमिक, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए प्रत्येक दिन के अंत में भुगतान किया जाता है। ऐसे मजदूरों को अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है और वे कई समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जैसे कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन, स्वच्छता, रहने के लिए उचित स्थान आदि नहीं है। शहरी जीवन के लिए प्रवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता है। बड़े शहरों के कई अवसर और आकर्षण बड़ी संख्या में लोगों को बड़े शहरों की ओर खींचते हैं। प्रवास का प्रवासियों के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव हो सकता है। बेरोजगारी कम होती है और लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं। प्रवासन लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। इसे लोगों के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है क्योंकि वे नई संस्कृति, रीति रिवाज और भाषाओं के बारे में सीखते हैं, जो लोगों के बीच भाईचारा को बेहतर बनाने में मदद करता है। कुशल श्रमिकों के प्रवास से क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में वृद्धि होती है। बच्चों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है और जन्म दर घट जाती है। दोस्तों, ये थे सकारात्मक प्रभाव। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव को भी देखेंगे हम आज के लम्हे प्रोग्राम में। ग्रामीण क्षेत्रों से एक व्यक्ति की हानि, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन और विकास के स्तर पर प्रभाव। शहरी क्षेत्र में श्रमिकों के आने से नौकरी, मकान, स्कूल सुविधाएं आदि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। बड़ी जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों, सुविधाओं और सेवा

0: गांवों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। शहरी इलाकों में ग्रामीण के लिए जीवन रहना मुश्किल है, क्योंकि शहरी इलाकों में प्राकृतिक वातावरण और शुद्ध हवा नहीं है। इन्हें हर चीज के लिए भुगतान करना पड़ता है। प्रवासन से किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन होता है, इसीलिए भारत में जनसंख्या का वितरण असामान्य है। कई प्रवासी पूरी तरह से निरक्षर और अशिक्षित है, इसीलिए वे न केवल अधिकांश नौकरियों के लिए अयोग्य है, बल्कि उनमें बुनियादी ज्ञान और जीवन कौशल का भी अभाव है। गरीबी के कारण वे सामान्य और स्वस्थ जीवन जीने में असमर्थ है। गरीबी में पले बड़े बच्चे को उचित पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं होती। प्रवास के कारण शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बढ़ गई है, जिससे अस्वच्छता, प्रदूषण आदि जैसे अनेक समस्याएं बढ़ गई है। कभी कभी प्रवासियों का शोषण किया जाता है। प्रवासन एकल परिवार की वृद्धि का एक मुख्य कारण है, जहां बच्चे व्यापक पारिवारिक दायरे के बिना बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था माइग्रेशन के बारे में आज के लंबे प्रोग्राम में। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने होस्ट, दोस्त और आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla. This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.
1: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 14वीं कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम युवाणी के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम योग ही जीवन है।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बीती हुई गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ चलने वाला व्यक्ति देर से ही सही लेकिन अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाता है। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सुखमय जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। नियमित योग अभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और विचार सकारात्मक बने रहते हैं। प्राणायाम और ध्यान तनाव, चिंता तथा अनेक रोगों से बचाने में सहायक होता है। योग व्यक्ति की एकाग्रता, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को बढ़ाता है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। इसलिए कहा जाता है कि योग ही जीवन है, क्योंकि योग हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन और बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं यह रूपक, योग ही जीवन है।

मानव जीवन आज अभूतपूर्व सुविधाओं से घिरा हुआ है, फिर भी तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा और शारीरिक रोग लगातार बढ़ रहे हैं। आधुनिकता की तेज रफ्तार में मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन खोता जा रहा है। ऐसे समय में योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, स्वस्थ और सार्थक बनाने वाली संपूर्ण जीवन शैली के रूप में सामने आता है। संस्कृत शब्द योग का अर्थ है जोड़ना या मिलन। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का विज्ञान है। भारत की हजारों वर्षों पुरानी यह अमूल्य धरोहर आज पूरे विश्व में स्वास्थ्य और कल्याण का पर्याय बन चुकी है। योग का उद्देश्य केवल रोगों को दूर करना नहीं, बल्कि मनुष्य के व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से विकसित करना है, जिससे वह एक संतुलित, सकारात्मक और जागरूक जीवन जी सके।

योग की परंपरा भारत में अत्यंत प्राचीन है। वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता तथा महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में योग के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। महर्षि पतंजलि ने योग को 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में विभाजित किया, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। इन 8 चरणों के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे आत्मसंयम, आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। योग का दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन में वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति से प्राप्त होता है। यही कारण है कि योग केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने वाला विज्ञान है।

योग शरीर को स्वस्थ और सशक्त बनाने का अत्यंत प्रभावी साधन है। विभिन्न योगासन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं तथा अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। नियमित योगाभ्यास से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर दर्द और जोड़ों की समस्याओं जैसी अनेक बीमारियों से बचाव संभव है। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन तथा पवन मुक्तासन जैसे आसन शरीर को लचीला और ऊर्जावान बनाते हैं। योग का सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि यह शरीर को भीतर से स्वस्थ बनाता है। यह केवल रोगों के लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर स्वास्थ्य की मजबूत नींव तैयार करता है।

आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में मानसिक तनाव सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है। प्रतियोगिता, आर्थिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंताएं मनुष्य को मानसिक रूप से थका देती हैं। योग मानसिक शुद्धिकरण का अद्भुत साधन है। ध्यान और प्राणायाम मन को शांत करने, नकारात्मक विचारों को कम करने तथा मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करते हैं। नियमित योग अभ्यास से मन में सकारात्मकता का विकास होता है और व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित बना रहता है। वैज्ञानिक शोधों ने भी सिद्ध किया है कि योग तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यही कारण है कि आज विश्व भर में मानसिक रोगों के उपचार में योग को सहायक चिकित्सा के रूप में अपनाया जा रहा है।

योग में प्राणायाम का विशेष महत्व है। प्राण का अर्थ जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है विस्तार। अर्थात प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित और विकसित करता है। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी, उज्जायी और नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम शरीर और मन दोनों को लाभ पहुंचाते हैं। नियमित प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है तथा मन शांत और स्थिर रहता है। यह तनाव, चिंता, क्रोध और भय जैसी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने में भी अत्यंत सहायक है। प्राणायाम के अभ्यास से व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान, प्रसन्न और आत्मविश्वासी अनुभव करता है।

तकनीकी युग ने जीवन को सुविधाजनक तो बनाया है, परंतु इसके साथ तनाव और व्यस्तता भी बढ़ी है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और निरंतर प्रतिस्पर्धा ने लोगों को मानसिक रूप से अत्यधिक व्यस्त कर दिया है। कई लोग दिन भर काम करने के बाद भी मानसिक शांति का अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे वातावरण में योग जीवन को संतुलित रखने का प्रभावी उपाय बनकर सामने आता है। प्रतिदिन कुछ समय योग और ध्यान के लिए निकालना मन को विश्राम देता है तथा तनाव के दुष्प्रभावों को कम करता है। योग हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करता है। यही कारण है कि आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के रूप में योग का महत्व निरंतर बढ़ रहा है।

आज का युवा वर्ग अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, सोशल मीडिया का प्रभाव तथा असंतुलित जीवन शैली युवाओं के मानसिक

और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। योग युवाओं के लिए आत्म विकास का सशक्त माध्यम है। यह उनकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है और मन सकारात्मक बना रहता है। योग युवाओं को अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ाता है। जो युवा योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं, वे जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अधिक दृढ़ता से बढ़ते हैं।

का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा और कार्य क्षेत्र में भी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। विद्यार्थियों के लिए योग एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक संतुलन बढ़ाने में सहायक है। परीक्षा के तनाव को कम करने में भी योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। वहीं कार्यरत लोगों के लिए योग शारीरिक थकान और मानसिक दबाव को कम करने का प्रभावी उपाय है। कार्यालयों में लंबे समय तक बैठकर काम करने से होने वाली समस्याओं से बचाव में भी योग मदद करता है। कई संस्थान और कंपनियां अब अपने कर्मचारियों के लिए योग सत्र आयोजित कर रही हैं, क्योंकि स्वस्थ और तनाव मुक्त कर्मचारी अधिक उत्पादक और रचनात्मक होते हैं।

स्वस्थ जीवन के लिए मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र आवश्यक है। योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योगाभ्यास से रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर के विभिन्न अंगों को पर्याप्त पोषण मिलता है तथा हार्मोन संतुलित रहते हैं। ध्यान और प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करती है। कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों ने योग और प्राणायाम के महत्व को विशेष रूप से महसूस किया। स्वस्थ शरीर और मजबूत प्रतिरक्षा शक्ति के निर्माण में योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी यह मजबूत बनाता है। योग के प्रथम दो अंग यम और नियम, सत्य, अहिंसा, अनुशासन, संतोष, स्वच्छता और आत्मसंयम जैसे गुणों का विकास करते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक गुणों का विकास करता है, तब उसका व्यवहार समाज के प्रति भी अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनता है। योग व्यक्ति को केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी प्रेरित करता है। इस प्रकार योग सामाजिक सद्भाव और नैतिक जीवन की आधारशिला बनता है।

योग का अंतिम उद्देश्य आत्मबोध और आध्यात्मिक उन्नति है। जब व्यक्ति नियमित योग, ध्यान और आत्मचिंतन करता है, तब वह अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानने लगता है। योग हमें यह अनुभव कराता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और आत्मज्ञान प्राप्त करना भी है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है और धीरे धीरे आत्मिक शांति की अनुभूति करता है। यही आध्यात्मिक जागरूकता उसे जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक, संतुलित और संवेदनशील बनाती है।

आज आवश्यकता केवल योग दिवस मनाने की नहीं, बल्कि योग को जीवन का नियमित हिस्सा बनाने की है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय योग, प्राणायाम और ध्यान के लिए समर्पित करे, तो अनेक शारीरिक और मानसिक समस्याओं से बचा जा सकता है। योग हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन प्रदान करता है। यह व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के कल्याण का मार्ग है। वर्तमान समय में जब तनाव, असंतुलन और जीवन शैली संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, तब योगमय जीवन ही स्वस्थ और सुखद भविष्य की सबसे प्रभावी दिशा बन सकता है।

योग भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ संपूर्ण मानवता के लिए एक वरदान है। यह शरीर को स्वस्थ, मन को शांत, विचारों को सकारात्मक और आत्मा को जागृत करने का अद्भुत माध्यम है। आधुनिक जीवन की चुनौतियों, बढ़ते तनाव और असंतुलित दिनचर्या के बीच योग एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण के साथ साथ यह जीवन को उद्देश्यपूर्ण, अनुशासित और आनंदमय बनाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर युवाओं को योग को केवल अभ्यास नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में अपनाना चाहिए। वास्तव में योगमय जीवन ही स्वस्थ, संतुलित, सफल और सुखी जीवन की सच्ची पहचान है।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे यह रूपक योग ही जीवन है। इसके वाचक स्वर है युवा दीपक कुमार सिंह और पी लता राज नंदिनी, और इसके लेखक है युवा दीपक कुमार सिंह। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।
1: लेकिन ये कैसे होगा?

0: पूछा।
1: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
0: महाराज।
1: यस
0: योगी।
1: दैट्स राइट।
0: वेलकम।
1: थैंक यू।

तो दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब हम लाए हैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत।

0: No more. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: TNC apply.
2: अंतराल के बाद इसे फिल्मी गीतों को जारी रखते हुए आपको अगला गीत सुनवाते हैं। हिमेश रेशमिया की संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म आशिक बनाया आपने से।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का यह सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:35 हुए हैं। अब सुनिए गौरव गान।

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।

0: ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନରୁ
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा।

0: आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगनजी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10

0: वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government,

0: 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks, and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana, and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden, and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: Iran's Joint Military Command announced today that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon and what it described as U.S. bad faith and a failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. In a statement broadcast on state television, the command warned that further measures have been prepared if what it called aggression continues. In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai today, as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century, chasing a modest 219-run target. India raced to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls, while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
2: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
3: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा पर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
4: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जैसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के

0: बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा। और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखिए कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
1: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
0: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थानें हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या

0: विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
1: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थानें हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक ये 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमें रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अपन गए थे बेंगलोर में, चलिए हम आयुष मंत्रालय भी हमको, हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठ कर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारे इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है, और दूसरा ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रहती कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
0: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
1: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है, जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग, कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमुख नहीं किया, लेकिन ये साल वहाँ की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहाँ पर चुन के दिए, और वो वहाँ के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहाँ पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहाँ के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, भरत मंडपम में। दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस, बहुत अच्छी ढंग से वहाँ पर किया। सिर्फ वहाँ पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहाँ पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया, हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहाँ पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड एक अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई

0: योगा कर सकते हैं। तो वहां पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा और वहां के कारपोरेशन और वहां के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहां तो रोड पर करेंगे लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाएत करके लोग घर के कोणासन का लोनार में बनाया, हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6,000 से ज्यादा, लोनार में भी 6,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहां पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया और अभी मेन इवेंट एक कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहां थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड की अच्छी जगह है कि वहां बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहां पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा और वहां के कारपोरेशन और वहां के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहां तो रोड पर करेंगे लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाएत करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहां पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे, लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, बस 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई, हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े बैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां है कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि भी CSR फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए, तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1,000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका कारपोरेशन नगर पंचायत है इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगेगी कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,40,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहाँ पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहाँ पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति, अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है, नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए,

0: शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग तक। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर ईयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारे देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया, तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होगी योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है, तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गाँव में हमारे भी, तो वहां पर लोग फीस दे के एक घंटा योगा सीखने जाते हैं या करने जाते हैं, कि भाई अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो ये रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जाधव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Interviewer was Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Spotlight.
3: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
4: Silence, lights, sound, camera, action!

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांत।

थी, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे, पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े

0: गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी, जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये,
1: जो गाना बना,
0: और दूसरा गाना था

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत

संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ूं रे।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा

0: और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई वर्षों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: डॉक्टर विवेक करमही का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमही।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमही। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में

0: इस कला की सुख श्रोताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के एक ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Shrimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek कर रहे अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है वारी जाऊं रे तुम पे। द्रुत रचना तीन ताल में है जिसकी बोल है चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विथ राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektaal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektaal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Manalalachai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

मौसम की जानकारी। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस समय रात्रि के 11:01:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

रविवार है शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 31वीं तिथि तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28 और 35 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज

0: अनमोल विचार।
1: योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक प्राचीन जीवन पद्धति है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। नियमित योगाभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे विचारों को सकारात्मक और जीवन को अनुशासित बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत स्वयं से ही होती है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए निकालें, तो हम एक अधिक संतुलित, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। योग हमें स्वयं से जोड़ता है, और जब हम स्वयं से जुड़ जाते हैं, तब जीवन की हर राह सरल और सुंदर लगने लगती है।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना अनमोल विचार। अब आरंभ होता है कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।